देखो, जिसने भी कहा है टाइम इज मनी, शत प्रतिशत सही कहा है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वक्त आजकल के जिंदगी में, दुनिया में इतनी अहम चीज हो गई है, मतलब सही है जिसने भी कहा है टाइम इज मनी इज एब्सोल्युटली राइट। और मुझे बताइए, ऐसे कितने ही लोग हैं आपके जिंदगी में जो बेवक्त जब आपको जरूरत हो आपके लिए बिल्कुल हाजिर हो जाए, गिन सकते हो ना आप उंगली पर। आई एम श्योर ऐसे लोग ना जिंदगी में बहुत कम ही होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए उनके पूरे बिजी डे रूटीन से, शेड्यूल से, जिंदगी से आपके लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं, तो बॉस यू आर एब्सोल्युटली लकी माय फ्रेंड। तो बस ऐसे लोगों को ना हमेशा से अपने पास रखना, अपने करीब रखना, और उनके लिए भी ना हमेशा अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ वक्त हमेशा रख निकाल देना। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ इस खूबसूरत ख्याल के साथ शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है, स्पेशली अगले 4 घंटे, अरे बहुत बातें करेंगे और बहुत टाइम स्पेंड करेंगे राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट। We are the sounds of the streets.

0: Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieva la murga. Mirci, murga.
2: हेलो,
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
2: Hello?
3: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अबे गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने Hello? माना जल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या आप पागल है क्या?
3: पागल आप है, पागल आप है, पागल आप है
2: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
3: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
3: आज के बाद घर से आ रही ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

0: में जी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live.

0: Well, that was Sachin Jigar ki awaaz. Saath de tu hai Rashmeet Kaur, right here on 89.6 Mirchi 1 par. And well, my friends, it's a new day, it's a new week. और क्या बात है भाई, जैसे ही हमने यहाँ पर गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कहा है आपसे, यहाँ पर गुड मॉर्निंग के मैसेजेस की लाइन लग गई है. वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग आफरीन, विश यू वंडरफुल डे. ये कौन कहता है? ये आलीशान कहते हैं. देन हरपाल संधू, ये भी कहते हैं गुड मॉर्निंग जी, हैव अ वंडरफुल डे, स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल एंड शेयर द जॉय. जरूर भाई. गुड मॉर्निंग आरजे आफरीन. रेडियो इज अ थिएटर ऑफ द माइंड. एवरी मॉर्निंग योर वॉइस पेंट्स द सनराइज फॉर अ थाउजेंड अनसीन फ्रेंड्स. हाउ गुड मॉर्निंग दैट इज. लेकिन ये कहा किसने है? ये इमरान ने कहा है. इसके अलावा अगर आप भी कहना चाहते हैं गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग 5000 1896. जुल्फिकार और अशरफ का भी मैसेज आ गया है गुड मॉर्निंग कहते हुए. देन हु इज दिस? सैफुल्ला का भी मैसेज आया है. सो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन. सीम्स लाइक आज आप बड़े ही अच्छे मूड में हैं क्योंकि इतने प्यार से आप गुड मॉर्निंग कह रहे हो. बहुत अच्छी बात है भाई. विद दिस, चलिए मैं शो को आगे बढ़ाती हूँ और हो गया है वक्त कि मैं आपको आज का तापमान का हालचाल बताऊं.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: वेल वेल वेल, तापमान ये कह रहा है 42 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम है. हालांकि फील जो होता है उससे ज्यादा ही होता है, 47-46 इस तरह से. मिनिमम जो है 36 तक जाएगा. और ह्यूमिडिटी ही तो खेल खेल रही है. इट्स इन द प्राइम मूड कहते हैं ना. 62% पर ह्यूमिडिटी फिलहाल है. ड्यूरिंग द डे मेरे ख्याल से ये और भी ज़्यादा बढ़ते जाने वाला है. ऑल इन ऑल यही कहूँगी भाई, पानी पीते रहो और जब भी बाहर निकलोगे ना आप, ऐसे नहीं कि सनस्क्रीन जो होता है वो सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है. प्लीज़ डोंट हैव दिस मिथ इन योर माइंड बिकॉज इट इज़ फॉर एवरीवन. हर एक की त्वचा के लिए होता है. सो प्लीज़ डू यूज़ सनस्क्रीन. ठीक है, विद दिस गानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी देर में फिर से आऊंगी मैं. देवनेगी पलक मुशाल, कुमार सनवाल का याग्निक की आवाज में गाना. और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

जुबिन नौटियाल की खूबसूरत सी आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची साथ देती हुई तुलसी कुमार। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए वीकेंड को हम अच्छे से मनाते हुए फिर से जब वीक की शुरुआत करते हैं ना, तो भाई दो चीज़ें ख्याल में आती है। देखिए दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक ये कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए हो कि हाँ हमारी नींद भी पूरी हो गई है, थोड़ा सा रीसेट भी हो गए हैं, दिमाग भी अच्छे से खुल गया है, वी गॉट टू रेस्ट वेल एंड देन यू आर ऑन अ हाई एनर्जी टुडे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने वीकेंड में दो दिन में इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश की कि आपको रेस्ट भी करना था लेकिन ये काम भी करना था, फिर वो दोस्त से भी मिलना था, फिर ये शॉपिंग भी तो करनी थी, और इस तरह से आपने ये दो दिन, इनफैक्ट जो पाँच दिन में जितना आप काम करते हो उससे ज़्यादा आपने दो दिन में आपको अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया है और बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लिया है। और फिर होता क्या है, संडे जब आते हो ऑफिस में तब और ज़्यादा थके हुए होते हो। तो इन दोनों में से जनरली आपका क्या सिचुएशन होता है जरा मुझे बताइए ना। 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर एंड टेल मी कि आप उस कैटेगरी में से हो जहां पर आप बहुत ही फ्रेश होते हो संडे मॉर्निंग्स क्योंकि आप बहुत अच्छे से रेस्ट कर चुके हो, या फिर आप और ज्यादा थके हुए होते हो संडे मॉर्निंग्स एंड देन ड्यूरिंग द वीक यू रेस्ट एंड यू गेट योर एनर्जी बैक विच इज योर टाइप। कैन आई टेल द ट्रूथ फॉर मी, प्रोबेबली आई एम इन टाइप टू, बहुत कुछ करने की कोशिश कर लेती हूँ मैं शायद दो दिन में। सो वेल 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर। और मीनवाइल कविता सेठ और कनिष्क सेठ की आवाज में कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: What a beautiful track, yeah. Sanampuri ki awaaz mein, Shipra Goyal ka saath, Right Ranveer Chi, one of the underrated songs of Bollywood, I feel. Filhal to Afreen jud gayi hai aapke saath, aur Mirchi Ghadi ka ishaara ho raha hai 7:05 ki taraf.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Aur zara real estate market Qatar ke, uske baare mein baat kare. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai Mirchi par. Aur dekhiye Qatar ki real estate market ki agar baat kare to agar aapko samajh lijiye Qatar mein property khareedne ho to aapki first preference kya hogi? Doha ki convenience, Pearl ka lifestyle ya fir city se thoda door ek peaceful location. Waise latest real estate numbers dekhe to filhal buyers ka favorite bilkul clear nazar aa raha hai. July ke last week mein hi agar baat kare to 5 din ke andar Qatar mein कतरी रियाल 333 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील्स हुई है. यस, यू हर्ड इट राइट. इसमें दोहा म्युनिसिपैलिटी अलोन 163 मिलियन कतरी रियाल के ट्रांजैक्शंस के साथ सबसे आगे रहा है. यानी ऑलमोस्ट आधा बिजनेस सिर्फ दोहा में हो रहा है. दोहा में तकरीबन 53 डील्स हुई हैं जबकि अल शमाल में सिर्फ एक. और रेजिडेंशियल यूनिट्स की अगर बात करें तो पर्ल आइलैंड topped the list, 14 deals, total value of 34 million Qatari riyal. अब एक important बात है, ये जो 333 million Qatari riyal का जो figure है, ये सुनके ये मत समझिए कि property prices suddenly बढ़ गए हैं. इस report में residential buildings और empty land भी included है. तो ये price rise का report card नहीं है, बल्कि market में कितनी buying selling हो रही है, उसका weekly snapshot है. तो बस ये बताने की कोशिश करें कि real estate market जो Qatar का, अगर आपको लग रहा है कि हाल बिल्कुल चल नहीं रहा है या फिर थोड़ा सा स्टैग्नेंट है तो नहीं, बिल्कुल एक्टिव मोड में है फिलहाल. और अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो आई थिंक सो दिस कुड बी द टाइम और यू कुड वेट. मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची. बस ऐसे ही कतर की गर्मा गर्म खबर लेकर आती रहूंगी राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vilva la murga. Mirci, murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोज है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुनके बनाया है?
3: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
2: कुकड़ू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah live.

अमृत नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी यारा दिलदारा। प्रोबेबली ये जो मूवी थी द एक्टर एक्ट्रेस के लिए ज्यादा पॉपुलर नहीं रही है और ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही होगी, लेकिन इसके म्यूजिक डायरेक्टर के लिए डेफिनेटली आइकॉनिक और सक्सेसफुल रही है। वजह ये जो गाना है ये जतिन ललित ने कंपोज किया था, तो ठीक है जतिन ललित बहुत सारे गाने कंपोज करते हैं, बट दिस इज नॉट जस्ट अनदर सॉन्ग। ये उनका पहला गाना था जो उन्होंने बॉलीवुड की कोई मूवी के लिए कंपोज किया है। जहां जतिन ललित की बात आती है, वी ऑलवेज रिमेंबर देम फॉर DDLJ, कुछ कुछ होता है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन उनकी शुरुआत पहले हुई थी 1991 की मूवी यारा दिलदारा से, जहां पहले की बात हो रही है और म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात हो रही है। तो मैंने सोचा कि और भी जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनका भी फर्स्ट याद कर लेते हैं, जैसे AR रहमान, ऑस्कर, ग्रैमी और दुनिया भर की रिकग्निशन से बहुत पहले 1992 में एक फिल्म आई थी, बॉलीवुड मूवी रोजा। इसके बहुत सारे वर्जन्स थे, लेकिन जो अगर बॉलीवुड की अगर बात करें खास, तो रहमान जी का डेब्यूट जो था, साउंड ट्रैक जो था, वो रोजा में हुआ था। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट विशाल शेखर। विशाल शेखर की भी कितनी सारी पॉपुलर म्यूजिक रही है, लेकिन

की कहानी शुरू हुई थी प्यार में कभी कभी से. डू यू रिमेम्बर दिस मूवी जहाँ पर डीना मोरिया थे? यस. और वो गाना जो मैं अगला प्ले करने वाली हूँ, ये वाला शान की आवाज में ये गाना विशाल शेखर का पहला कॉम्पोजिशन था. यस. Enjoy this lovely track with that muskurahat on your face on which it's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।

0: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
0: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
0: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
2: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
2: The Mentalist Suhani Shah,

0: Well, what a beautiful आवाज, श्रेया घोषाल की ये खूबसूरत सी आवाज, और अब साथ जुड़ गई है आपके साथ ये आवाज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है आपके साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और समझदार को इशारा काफ़ी है, इनफैक्ट काफ़ी काफ़ी है क्योंकि यार नाउ इज़ द टाइम जहां पर आप और मैं मिलकर खेलने वाले हैं मेरा फेवरेट वाला गेम जिसे मैं कहती हूँ
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट,
0: और आज का सीन कुछ ऐसा है, सीन पहचान लीजिए, बहुत सारे आपको हिंट्स लगने वाले हैं ये सीन के लिए, और फिर मैं बता दूँ कि चलो सीन सुन लो पहले। ऑल राइट, वेरी कंफ्यूज्ड, अरे यार ये कौन सी मूवी है समझ में ही नहीं आई, लेकिन एक्ट्रेस जरूर हमने पहचान लिया है। यस, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग भाई, एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। और अगर आपने पहचान लिया कि ये कौन सी मूवी है 5000-1896, तो मैं एक हल्का सा हिंट आपको ये देती हूँ कि आलिया भट्ट ये मूवी में उनके साथ नजर आई है जिनके साथ इन्होंने अपना डेब्यू किया था, ठीक है, वो लंबू वाला, ठीक समझ रहे हो ना, लंबू वाले की बात कर रही हूँ, वो दूसरे वाले की बात नहीं कर रही हूँ, 5000-1896। और ये मूवी में भी अभी जिसका डायलॉग मैंने सुनाया है यहाँ पर भी एक लव ट्रायंगल ही है। वेल बहुत ही अच्छी मूवी रही है ये, जनरेशंस इसमें है, बाप है, बेटा है, दादा है, कौन सी मूवी की बात हो रही है, बहुत सारे हिंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉप किए हैं। 5000-1896 इज माय नंबर। मीनवाइल अरमान मलिक की आवाज में एक लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है। अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people. It's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: अमित मिश्रा की आवाज, शिल्पा राव का साथ, ऐ दिल है मुश्किल का ये गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची आपने सुना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज आफरीन ने सुबह सुबह, मतलब वैसे तो यही वक्त पर आता है, लेकिन हफ्ते के पहले ही दिन में ऐसी गुगली डाली है कि ऐसे गुगली जो है ये संभाल ही नहीं संभल रही है। वही लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है। और हाँ जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत सारे हिंट्स आए थ्रोन अराउंड। सो पहले सीन सुन लेते हैं और फिर उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सी बात करेंगे।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: हम जब साथ होते हैं तो I don't know, ऐसा लगता है जैसे it just something
3: fits।
2: हाँ, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना?
0: All right, I like their chemistry। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये कौन है इसके लिए नो पॉइंट्स ऑन गेसिंग, क्योंकि आलिया भट्ट की आवाज़ थी और इसके बारे में मैंने कहा कि आलिया भट्ट ने जिसके साथ में अपना डेब्यू किया था और वो लंबू वाला, हाँ उन्हीं के साथ में ये दूसरी मूवी आई थी। इनफैक्ट कौन सी मूवी है अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, इसके बारे में आप ही बताएंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैसेज आया है जिन्होंने गेस किया ना, भाई सल्यूट है आपको, क्योंकि इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली डिफिकल्ट फॉर मी टू गेस दिस। लेकिन यहाँ पर देव का बिल्कुल सही मैसेज है, देन मोहसिना हैज मैसेज राइटली, चार्ली का भी बिल्कुल सही मैसेज आया है, आलोक ने बिल्कुल सही मैसेज किया है सेइंग दैट आफरीन दिस मूवी, मोहम्मद यूसुफ खान का भी, दिस मूवी इज कपूर एंड सन्स, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान, ऋषि कपूर, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार कास्ट है इसमें, रत्ना पाठक, रजत कपूर। लेकिन टॉकिंग अबाउट फवाद खान का कैरेक्टर, खास सर बहुत सारे एक्टर्स के पास गया था, जानते हो अक्षय कुमार के पास गया था, सैफ अली खान के पास गया था, शाहिद कपूर के पास गया था, एंड दे ऑल टर्न्ड इट डाउन, एंड देन अल्टीमेटली इट वेंट ऑन टू फवाद खान। एंड टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, अगला गाना जो प्ले कर रही हूँ मैं, नो इट्स नॉट कर गई चुल, बिल्कुल भी नहीं, इट्स सम अदर सॉन्ग। अंडररेटेड है लेकिन बहुत प्यारा गाना है यार, अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाज में। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: हाँ जी, और कॉकटेल टू का ये जो गाना शाहिद कपूर की मूवी है, लेटेस्ट मूवी है, लेकिन आजकल देखा जाए ना, जितनी ही तेजी से मूवी थिएटर में चढ़ती है ना, उससे ज्यादा तेजी से ये उतर जाती है और फिर उससे ज्यादा तेजी से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आती है। और ऐसा बहुत रेयरली होता है कि इनफैक्ट होता ही नहीं है कि मूवी अगर थिएटर में चल रही हो और फिर मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी हो, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार मूवी इतना टाइम तक थिएटर में चलेगी। ऐसे ही कुछ हाल हुआ है लेटेस्ट मूवी मैं वापस आऊंगा के बारे में बात कर रही हूँ मैं। दिलजीत पाजी की ये मूवी है जहाँ पे नसीर साहब है वो विद फेनोमिनल एक्टिंग स्किल्स, एंड देन वी ऑल्सो सी वेदांग रैना एंड शर्वरी इन दिस मूवी। और बहुत ही प्यारी मूवी है। जब ये मूवी हमारे कतर में रिलीज हुई थी ना, तो मैंने कहा था कि भाई लोग जाओ देखो, ऐसी मूवी डिजर्व्स टू बी वॉच्ड इन थिएटर्स। लेकिन नाउ नो वरी, अगर आपने नहीं देखा है तो अब ये थिएटर्स से उतर, यहाँ के थिएटर्स से तो उतर गई है, लेकिन यू नो द फन फैक्ट के इंडिया के थिएटर्स से कई जगह पर अभी भी ये रन कर रही है, बिकॉज पीपल ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद दे आर प्रेफरिंग टू वॉच इट ऑन बिग स्क्रीन। दैट्स हाउ यू प्रमोट अ गुड मूवी, है ना। सो प्लेइंग द सेम ट्रैक मूवी का आदित्य आर के अरमान खान की आवाज़ में अगला गाना मैं वापस आऊँगा का। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर ये ऑलरेडी स्ट्रीम कर रही है। देखो बता दिया आफरीन ने, ये इतनी तारीफ इतने टाइम से कर रही है, क्या है जरा देख तो लेते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू भाई, जिनके पास पेशेंस नहीं है ना, ये मूवी ना ही देखे, ठीक है ना। इतना मैंने आपको एडवाइजरी जारी कर दिया है आपके लिए।
1: शहर है लोग,
0: हार्टफेल्ट सॉन्ग फ्रॉम द सेम मूवी, एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: काम

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं
2: चाहिए
1: इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना?
1: यूरिन चढ़ाना है इसका, सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब चढ़ाऊं?
1: आपका ग्रुप मिल
2: गया सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी।
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

रेखा अब आई हूँ तो काम की बात तो सुना कर ही जाओगे ना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन कौन 89.6 मिर्चीवान। और पैसे की बात से ज्यादा काम की बात कुछ और हो सकती है क्या बंधु, बताओ मुझे। तो देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.10, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज जो है इट इज एट 76.22, बांग्लादेशी टाका के बारे में बात करें तो इट इज एट 33.96, श्रीलंकन रुपीज इज एट 92.02 एंड नेपाली रुपीज एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं 41.69 नेपाली रुपीज। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन 89.6, सुंदर रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC सप्लाई.
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.
1: द मेंटलिस्ट सुहानीशा.

0: गए।
1: अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना राइट हियर। और सच कहूँ ना, मुझे ये वीक जो है, मतलब जैसे वीक की शुरुआत हुई है, और मैंने सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि भाई जब वीक की शुरुआत होती है तो आप एकदम से फ्रेश होते हो या फिर आप और ज़्यादा थके हुए हो जाते हो। मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा होता है यार, नॉट एवरी टाइम बट कभी कभार ऐसा होता है कि मैं वीक एंड में कुछ ज़्यादा ही मैं काम कर लेती हूँ, काम नहीं कह सकते बट कुछ ज़्यादा ही मैं सोशलाइज कर लेती हूँ या फिर कुछ ज़्यादा ही मैं कहीं पर चले जाती हूँ, तो फिर क्या होता है ना, जो एक्चुअली आराम करना चाहिए ना वो हो नहीं पाता है, और फिर संडे मॉर्निंग मुझे नींद आती है। क्या आप भी मेरी तरह हो या फिर कोई तो बताओ यार, मतलब ऐसा कोई होता है मेरी तरह या मैं ही ऐसी एक अलग ही टाइप की बंदी हूँ। मीनवाइल शो सुन रहे हो आप, मिर्ची मॉर्निंग्स, और आफरीन है आपके साथ, और अभी आफरीन अपना मिर्ची का मिस्ट्री बॉक्स खोलने वाली है। क्या है ये मिस्ट्री बॉक्स? ये मिस्ट्री बॉक्स ऐसा है कि हर रोज इसमें से कोई ना कोई नया चैलेंज निकलता है, और सरप्राइज इज द स्लाइस ऑफ लाइफ, ऐसे कुछ कहते हैं ना, स्पाइस ऑफ लाइफ समझ लीजिए, वैसे ही कुछ। यहाँ पर आज मैं कुछ म्यूजिक लेकर आई हूँ, कह सकते हैं एक गाने का हम अंतरा कहता है ना उसे, हाँ अंतरा मैं बजाने वाली हूँ। 90s की मूवी है, तो आपने मुझे गाना नहीं बताना है, गाना बता दोगे तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे मूवी जाननी है, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो, सो हियर इट गोज।

0: राइट, गाना कौन सा है ये तो आप बता दोगे, मुझे पता है, लेकिन मूवी कौन सी है ये तो बताओ। 5001896 इज माई नंबर माई बंधुओं, और बताओ मुझे कि यार ये कौन सी मूवी का गाना अभी आपने सुना है। मीनवाइल गुरु की आवाज में और निकिता गांधी का साथ देते हुए अगला गाना वन ऑफ माई फेवरेट्स,
1: समंदर पार गए मैं सब कुछ,
0: एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah.

מוטיאנה שייך ושאל כי ימאז מי יגנה רייט יו און מרצ'י Very good morning and welcome back. Simply Afreen का साथ है जो आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग गेम्स खिला रही है. वैसे तो मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स का टाइम चल रहा है जहाँ पर मैं ये मेरा बॉक्स खुलता है और एक ऐसा नया चैलेंज निकलता है आपके लिए और आपने गेस करना होता है उसका आंसर. बस तो आज का क्या चैलेंज है मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. कुछ ऐसा है कि आपको इस गाने का अंतरा मैं सुना रही हूँ, ठीक है, और आपको गेस करना है मूवी कौन सी है. ठीक है,

कहाँ, व्हाट अ सॉन्ग ना, कितना मजे का गाना है. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट गाना भी रहा होगा इन द 90s. लेकिन किस किस ने मैसेज किया है पहले उनकी तो यहाँ पर आवाज़ सुने. वेल यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लेट मी टेल यू. आज नीरज, अनवर, प्रिंसन, रोहित, देन आई हैव योर, इनका नाम तो लिखा ही नहीं है, फिर इनका नाम क्या है, शायद कपिल. इनका भी नाम शायद कपिल ही है. एंड सभी का एक ही चीज़ कहना है, मोहम्मद यूसुफ खान, कि आफरीन ये जो गाना तुमने सुनाया है ये तो धड़कन मूवी का है, 90s की वो मूवी जिसमें शिल्पा शेट्टी थी, सुनील शेट्टी थे और फिर अक्षय कुमार थे. व्हाट अ मूवी यार. मतलब बॉलीवुड में कई सारे लव ट्रायंगल्स आए हैं लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ है, कुछ ऐसे लव ट्रायंगल्स हैं जो क्लासिक रही है. एंड आई थिंक सो धड़कन इज वन ऑफ देम. एंड ऑल्सो द रीज़न कुड बी यही तो कि गाने बहुत अच्छे हैं. अलका याग्निक की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी धड़कन, प्लेइंग राइटर ऑन विच शी माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: विशाल मिश्रा की आवाज और तबाही, टॉक्सिक मूवी का ये गाना। मिर्ची घड़ी का इशारा तो हो रहा है 9:04 के तरफ, लेकिन बात करेंगे अबाउट दिस मूवी।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: A trailer without selling the story? How is that possible? देखिए एक सवाल है मेरा आपसे कि एक ट्रेलर का काम क्या होता है, बताइए मुझे। मेरे लिए बता दूं कि थोड़ा सा स्टोरी का दरवाजा खोलना, कैरेक्टर से मिलवाना और फिर एग्जैक्टली वहीं रोक देना जहां मैं कहूं कि यस बॉस आई रियली वांट टू वॉच दिस मूवी, ये कुछ तो है इसमें। कल मैंने टॉक्सिक का ट्रेलर देखा, 4.5 मिनट का ट्रेलर। यश इज बैक, स्केल बड़ा है, विजुअल्स ग्रैंड है, स्टार कास्ट काफी सॉलिड लग रही है, काफी सारे लोग हैं, कियारा अडवाणी, यश है, हुमा कुरैशी है एंड मैनी मोर। लेकिन 4 मिनट से ज्यादा के ट्रेलर देखने के बाद मुझे कहानी से ज्यादा वायलेंस याद रह गया। खून, गन्स, ब्रुटैलिटी, रेज और फिर थोड़ा और खून। आई नो नाम ही इसका टॉक्सिक है, बट डस द ट्रेलर ऑल्सो हैव टू कन्विंस मी बाय बीइंग दिस टॉक्सिक? देखिए मैं वायलेंस की अगेंस्ट सिनेमा की बात नहीं कर रही यहाँ पर, अगर कहानी डिमांड करती है एब्सोल्युटली ठीक है, बट वायलेंस शुड सर्व द स्टोरी, स्टोरी शुडंट बिकम एन एक्सक्यूज टू सर्व वायलेंस। और लेटली ना मुझे लगता है हम सिनेमा में एक स्ट्रेंज कॉम्पिटिशन में आ गए हैं। हीरो कितना रुथलेस हो सकता है, एक्शन कितना ब्रूटल हो सकता है और स्क्रीन पर कितना शॉक क्रिएट किया जा सकता है। वेल मे बी टॉक्सिक द फिल्म विल सरप्राइज मी एंड आई जनरली होप इट डस, बट प्योरली एज अ ट्रेलर, सॉरी माय फ्रेंड्स, मुझे मूवी की कहानी नहीं बेची गई, मुझे यहां पर सिर्फ टॉक्सिक कहानी मतलब एक अलग ही किस्म का वायलेंस ही बेचा गया है। नाउ यू टेल मी माय फ्रेंड्स, आपने देखा है बाय द वे टॉक्सिक का ट्रेलर? 4.5 मिनट का प्योर वायलेंस। अगर आपको वायलेंस बेस्ड मूवीज पसंद है देन दिस इज फॉर यू, एब्सोल्युटली अ ट्रीट फॉर योर आईज। एंड इफ रियली वायलेंस इज नॉट योर टाइप देन आप तो ट्रेलर से ही दूर रहिए, मूवी तो दूर की बात है। माइक से दिल तक आप फ्री ने आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची और आनंद राज आनंद और रुबे की आवाज में वेलकम टू द जंगल का ये गाना।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ले मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू को।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

याद दिलाता है जब डेस्कटॉप पर हम गाने डाउनलोड करके अपने फेवरेट वाले सुना करते थे. वेल फ्रॉम दोस टाइम्स ऋचा शर्मा की आवाज में मुसाफिर मूवी का ये गाना आपके लिए.

अब वीडियो गेम्स के साथ में पेरेंट्स को रिश्ता बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आपको पता होगा कि आपका बच्चा ऑनलाइन गेम क्या खेल रहा होगा, लेकिन क्या आपको पता है वो किसके साथ खेल रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और वीडियो गेम्स सिर्फ गेम्स नहीं रहे, दे आर ऑल्सो सोशल स्पेसेस जहां चैट्स होती है, स्ट्रेंजर्स इंटरेक्ट करते हैं, यूजर जनरेटेड वर्ल्ड्स होते हैं, और इसीलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्व रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही बात कह रही है कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जहां वो पेरेंट्स को इंकरेज कर रही है कि बच्चों के साथ में रहे और उनके ऊपर नजर रखे कि एज अप्रोप्रिएट वीडियो गेम्स ये चूज कर रहे हैं या नहीं। और देखिए, कतर में हमने पिछले साल भी देखा था कि रोब्लॉक्स कतर में इनएक्सेसिबल हो गया था एमिड ग्रोइंग कंसर्न फॉर चाइल्ड सेफ्टी, और बस उसी हिसाब से फिर से ऐसी एडवाइजरी आई है कि बच्चों वीडियो गेम्स कौन से खेल रहे हैं, क्या है, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हम ऑफलाइन दुनिया में तो कहते हैं ना, पूछते हैं कि बेटा किसके साथ जा रहे हो, किस कौन है तुम्हारा दोस्त, अब टाइम आ गया है कि हम ऑनलाइन दुनिया में भी शायद वही सवाल करें कि बेटा किसके साथ खेल रहे हो। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट है ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

0: Well, one of my favorite movies of Bhaijaan, this has to be Bajrangi Bhaijaan ka ye gaana, Jubin Nautiyal ki awaaz, and what a beautiful song this is. आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, आपकी ना आदत बन जाते हैं? और बस इसी ख्याल पर आज मेरी कुछ लाइंस मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, वो कुछ इस तरह से है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, सोचा तुमसे बात करना बंद कर दूं, सोचा तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूं, सोचा तुम्हारा नाम लेना छोड़ दो, सोचा रोज तुम्हारा इंतजार करना छोड़ दो, दिल को समझाया भूल जाओ उसे, तो दिल ने पूछा धड़कना भी छोड़ दूं। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, जैसे मैंने बताया कि आपकी आदत में जुड़ जाते हैं। सुबह उठते ही एक ख्याल में, किसी गाने की एक लाइन में, और बस इन लोगों को ना भूलना, सिर्फ यादों को डिलीट करना नहीं होता है, अपनी अंदर से एक आदत को धीरे धीरे निकालना होता है। कभी आपने कोई ऐसी आदत अपनी छोड़ी है? माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी.
3: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11.
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: स्टोर करता है.
3: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन.
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन.
3: खत्म.
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट. 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live.

अरिजीत सिंह और पलक मुशाल की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। अच्छा, कारगिल की कहानी ना हमने सिनेमा में कई बार देखी है ना, लेकिन दिस टाइम ये कहानी जमीन से नहीं आसमान से आ रही है। Yes, you've heard it right. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और Netflix पर एक नई 6 एपिसोड सीरीज रिलीज हुई है, ऑपरेशन सफेद सागर इसका नाम है। एंड सरप्राइजिंगली रिव्यूज इसके काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। 1999 कारगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन का कोड नेम था सफेद सागर। और सीरियस ये जो सीरीज है मेनली गोल्डन एरोज यानी नंबर 17 स्क्वाड्रॉन और उनके पायलट्स की कहानी को लेकर आती है। सिद्धार्थ है, जिमी शेरगिल है, अभय वर्मा है, इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ तो हो ही रही है। और काफी जबरदस्त तरह से ये दिखाई गया है कि वॉर ड्रामा भी है, पेट्रियोटिक भी है, इमोशंस भी है, लेकिन क्रिटिक्स का ये जरूर कहना है कि इसमें वो अननेसेसरी चेस्ट थम्पिंग या ओवर टॉप देशभक्ति नहीं है। और बस इसी वजह से ये जीरो जिंगियोजम को अप्रिशिएट किया गया है। वेल, व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग कि कारगिल की कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन एयरफोर्स ने 18,000 फीट के आसपास के माउंटेनियस बैटलफील्ड में एग्जैक्टली क्या चैलेंजेस फेस किए थे वो चैप्टर पॉपुलर कल्चर में यहाँ पर कंपैरेटिवली हमने कम सुना है। सो वेल, ऑपरेशन सफेद सागर समथिंग ओटीटी पर है, आया है, ये नेटफ्लिक्स पर है, सो यू शुड प्रोबेबली वॉच दिस। तब तक के लिए मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक। ऐसे ही आपको ओटीटी पर क्या देखना है, कतर में कहाँ जाना है, आजकल की दुनिया में क्या ट्रेंडिंग है, बॉस सब कुछ बताऊंगी ऑन माय शो मिर्ची मॉर्निंग। सो यू गॉट स्टे ट्यून्ड एंड यू टुमारो 6 से 10 बजे तक मिर्ची मॉर्निंग्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, सायोनारा, और सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: अमित चू,

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

सी है। यार मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टियों का ना एक अलग प्रोविजन होना चाहिए। मिर्ची अंशु, अरे बस यही प्रोविजन की छुट्टी की थकान मिटाने के लिए 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी। देखिए वेकेशन का माहौल है, लोगों का आना जाना चल ही रहा है एंड आपकी कहानी अपनी जुबानी में इस वक्त पेश कर रही हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम इतने व्यस्त हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कम से कम एक हफ्ते का ब्रेक मिले, कहीं तो हम घूम फिर के आए। अब घूम फिर के आते हैं, सॉलिड मजे करके आते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है भाई इतने ज्यादा थक गए कि ऑफिस ज्वाइन करने के पहले 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी जो है ना इस वक्त और मिल ही जाए। तभी तो मैंने कहा कि छुट्टियों का नया प्रोविजन, छुट्टी की थकान मिटाने के लिए 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी। यार काश ऐसा हो पाता है। एंड हाँ, उसके कोई पैसे नहीं करते और एडिशनल मिलती तो और भी मज़ा आता। देखो अब ये हो पाएगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ कुछ तो खास है जो ज़रूर इस वक्त आपके साथ होने वाला है। गजब का शो जो है वो शुरू हो चुका है, अच्छे गाने आपकी ज़िंदगी में ऐड होने वाले। एन्जॉय करें, टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एन्जॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बता दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ, आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है? अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो
1: खींचे, अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसको चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक,
4: इट्स ऑल डाउन टू धोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

देखो आ रही का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कब जा रही, ये सवाल हर कोई हर दिन पूछता है। मिर्ची अंशु, चाहे इसका जवाब आपको और मुझे पता ही क्यों ना हो, लेकिन हर दिन फिर भी हम ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि भाई इतनी गर्मी आखिरकार कभी कम होगी। जानते हैं अगले 2 से 3 महीने तक ये आलम जो है वो चलने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी रीएम्फसाइज हर दिन करना एक आदत सी बन गई है ना यार। गर्मी की बात करूँ ना तो बचपन के दिन काफ़ी याद आते हैं। आई स्टिल रिमेंबर हमारे घर गर्मी के मौसम में छाछ बनाई जाती थी, लेकिन ना उस वक्त कोई मिक्सर या ब्लेंडर यूज़ नहीं होता था। मिट्टी के कुल्हड़ में एक लकड़ी की वो दल घुटनी होती थी, दादी जो है घोट घोट के लस्सी भी बनाती थी एंड साथ ही छाछ भी बनाती थी। भाई क्या कमाल, क्या गजब का टेस्ट। आज के डेट में इस डिजिटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में आप कितने भी नए इक्विपमेंट्स के जरिए क्यों ना कुछ बनाने की कोशिश करें भाई, लेकिन सच कहूँ वो मिट्टी के कुल्हड़ में बनाए गए डिशेस का जो टेस्ट है ना भाई, आज के डेट पे आप आना काफ़ी मुश्किल है। वेल, लेकिन जो है उससे तो काम चलाना ही पड़ेगा। इतना ही कहना चाहूँगी, गर्मी जो है जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है, अपने आप को खूब ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। अब हाइड्रेशन की बात करें तो चाहे नींबू की शिकंजी हो गई, छास हो गया, लबान हो गया, या तो मैं तो कहती हूँ कच्चे आम का पन्ना हो गया, ये सब जो है ना अपनी लाइफ में रूटीन में आप शामिल कर लें। एंड कुछ और अच्छा बनाते हैं तो मुझे भी बुला लें। 5001896, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची1 कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची बंदीगराम अंशु। एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
6: Happy taste good. Papa John's. Enjoy double delight offer.
5: Two small pizzas at 44. Two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health. Because aap deserve karte hain best care.
5: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homes R Us. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
8: Visual media partner Rehab Media.
5: Production partner Symphony. गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
9: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

अजी तुमने पुकारा और हम चले आए और साथ अपने बचपन की कोई खास याद भी लाए। मिर्ची अंशु यार बचपन के दिन कितने कमाल हुआ करते थे ना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उन दिनों में सबसे ज्यादा स्पेशल कुछ होता था, सो दैट यूज्ड टू बी आवर इनोसेंस। पता है मुझे आज भी वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं ग्रेड सिक्स में थी और हमारे स्कूल में ना एक मैजिक शो हुआ था। एंड इतना ज्यादा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था, हर पल के बाद बस ये लग रहा था कि ये जादूगर बाबा ने किया तो किया कैसे, एंड सो मेनी क्वेश्चंस। बस लगता था कि कोई ना कोई ऐसी जादू की छड़ी मेरे पास भी आ जाए एंड जितनी दिल की ख्वाहिशें हैं ना वो पूरी हो जाए। एंड मुझे वो बात भी याद है कि जब वो जा रहे थे मैं चुपचाप उनसे मिलने गई थी एंड उनसे बस एक मैंने रिक्वेस्ट की थी कि क्या आपके लिए पॉसिबल है, एक महीने के बाद ना हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, आप जादू से बस वो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने ले आओ। महज 11 साल की उम्र में दिल में ये ख्वाहिश आई थी एंड तब उन्होंने मुझे जवाब के तौर पे ये कहा था कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर की जरूरत क्या है, तुम तो खुद इतनी इंटेलिजेंट हो कि जो चाहो वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, बस तैयारी पूरी करके जाना। एंड बस मुझे लगा कि सच में ऐसा होगा एंड मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी एंड बाद में ये सच में मैं सच मानने लगी थी कि जो जो क्वेश्चन मैं चाहती थी वो सारे आ गए। चलिए वो जादू तो उस वक्त हो गया लेकिन एक कमाल का जादू इस वक्त आपको हम कतर में दिखाएंगे। 25th of September कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, सुहानी शाह लाइव। गो एंड बुक योर टिकट्स राइट अवे। स्नूनू एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, स्नूनू सिटी में जाकर अपनी टिकट्स जो है बुक करनी है एंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट को अवेल करना है। डोंट मिस आउट। लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: कौन? मैं?
1: हाँ तुम।
0: बस तुम?
1: ओफो।
0: कौन मैं?
1: हाँ तुम।
0: बस तुम?

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
3: तो वो तो पता है मेरा बस चलता है, एक-एक को घुसड़ मार के आती हूँ।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The Mentalist, Suhani Shah.

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.

0: ना।
1: अरे कोई ना, वो वक्त निकला है तो ये वक्त भी निकल ही जाएगा।
2: मिर्ची अंशु
1: यार पता है क्या, आज की डेट में माँ बाप की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल क्या हो गया है? बच्चों को एंगेज किया जाए तो किस तरह से किया जाए? नहीं, शुरुआती दौर छुट्टियों की तो निकल गए, हम घूम फिर के आ गए, लेकिन अब करें तो क्या करें? चलो यार, अगर बच्चे समर कैंप वगैरह जा रहे हैं तो फिर भी एक बड़ा सा वक्त जो है वो निकल जाता है, लेकिन बाकी समय में इन्हें एंगेज कैसे करें? जब ये क्वेश्चन मैं पेरेंट्स को करते हुए सुनती हूँ ना, तो मेरा ध्यान सीधा हमारे चाइल्डहुड डेज में जाता है। भाई हम तो कभी बोर हुए नहीं, एंड माता पिता को ये टेंशन हमने कभी दिया ही नहीं कि हमें किस तरह से एंगेज किया जाए। इनफैक्ट हम कुछ इस तरह से घर के बाहर होते थे कि जब तक वार्निंग ना मिले या वो बैट ना मिले, हम जो है ना घर के अंदर ना आने वाले। उस वक्त घर वाले कहते थे, बेटा प्लीज कुछ देर के लिए तो घर आ जाओ। और आज की डेट में पेरेंट्स कहते हैं, बेटा प्लीज कुछ देर के लिए सही, लेकिन घर के बाहर चले जाओ। अगर लगता है कि आपकी जिंदगी में यही प्रॉब्लम, क्वेश्चन, सवाल इस वक्त है, तो एक ऐसा ठौर ठिकाना, एक ऐसा अड्डा मैं आपको बताती हूँ जहां पर आप जरूर बच्चों को लेकर जा सकते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहां पर एक फन एक्टिविटी इस वक्त चल रही है। हर दिन 29th ऑफ अगस्त तक आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। अगर मॉर्निंग सेशन की बात करें, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, शाम के सेशन की बात करूं तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। जाइए, बच्चों को सही तरह से एंगेज करके आइए, और उसके बाद एक्सपीरियंस रहा तो कैसा रहा, एंड वो सवाल कम हुआ या ना हुआ, ये मुझे जरूर बताइए। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

यार शरारत तो होती थी, इन सच कहूं असल शरारत तो उन दिनों होती थी। मिर्ची अंशु, अरे बस अपने स्कूल एंड कॉलेज टाइम्स की बात कर रही हूँ यार। अगर सही मायने में उन नादान शरारतों की बात करें तो भाई उन दिनों जो हमने ज़िंदगी जी है ना, अब उसकी कहानी बयां करें तो कैसे करें। आई एम प्रीटी श्योर आपको भी वो लम्हे बहुत अच्छी तरह से याद होंगे जब कोई भी स्कूल कॉलेज में कांड करने के बाद सबसे पहला डर बस इसी बात का होता था कि भाई साहब आज मम्मी पापा को बस पता ना चले या टीचर प्रिंसिपल सर का उनके पास कॉल ना जाए। इनफैक्ट अगर कॉल चला भी गया तो हमारे दोस्तों की जो पलटन होती थी ना वो इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि उस स्टोरी को तोड़ मरोड़ फाइनली जब घर पे क्लास लगे तो पेरेंट्स की नज़रों में हमें कैसे बचाना है वो बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। क्या दिन थे यार। यार पता है हम ना लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, लेकिन क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि जो दोस्ती आपकी स्कूल या कॉलेज टाइम पर हुई है ना उसकी बराबरी आप किसी और से कर ही नहीं सकते। रीज़न ये है वो दोस्ती तब हुई जब आपके मन में कोई चोर नहीं था, आपके मन में कोई ख्वाहिशें नहीं थी, कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं थी। लेकिन क्या दिन थे यार। स्कूल कॉलेज का वक्त मुझे लगता है इससे प्यारा फेस कोई और हो ही नहीं सकता है ना। चलिए यारी के नाम ये अगला गाना एन्जॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La virtua la murga.
1: Mirchi, murga. उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट ब्लड?
1: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
2: चाहिए
1: इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया। आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी जी,
1: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। चार यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर 1 मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
5: The Mentalist Suhani Shah live.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

यार सोशल स्टडीज का वो मैप्स वाला टॉपिक याद है? मिर्ची अंशु यार सच कह रही हूँ, 7th, 8th, 9th ये तीनों के तीनों साल इस मैप्स वाले टॉपिक ने मुझे जितना परेशान किया है ना, शायद किसी और सब्जेक्ट ने किया हो। मतलब वो एटलस की मोटी मोटी किताबें, एंड टारगेट क्या होता था? सिर्फ वर्ल्ड मैप नहीं, अपने देश का मैप नहीं, किस रीजन में लोकेशन के अलावा क्या क्रॉप ग्रो होता है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको डाइजेस्ट करना है। लेकिन फाइनली हमने कर ही लिया, कभी नंबर ज्यादा आए कभी कम आए, लेकिन हाँ अच्छे जरूर आए, चीटिंग के चलते, अपनी कोशिशों के चलते, लेकिन पास जो है ना हम हो ही गए। हैविंग सेड दैट, आज अगर जिंदगी को देखने की कोशिश करें तो सबसे खास और खूबसूरत बात यही है कि लाइफ जो है इकट्ठा एक साथ कोई मैप नहीं देती। अगर हमें कुछ पता होता है तो सिर्फ हमारा अगला कदम, कल क्या होगा किसने जाना है, लेकिन हाँ एक स्ट्रक्चर्ड मैप जो है हमारे जहन में जरूर होता है। जिंदगी यही कहती है कि अगर उस मैप को नेविगेट करना है तो एक कदम बढ़ाना जरूरी है। पता है मेरे पापा जो है ना अक्सर कहा करते थे, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस कदम बढ़ाते रहना, हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह को गले लगाते रहना, मंजिल खुद आवाज देगी, तो बस हौसला सजाए रखना, जिंदगी का बस एक उसूल है, मुस्कुराते हुए चलते रहना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: में की स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

यार मुझे एक बात लगती है कि अगर किसी के पास ये हुनर हो कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को पकड़ सके, तो सबसे पहले दुनिया में किस किरदार की वाट लगेगी, जरा सोचें। मिर्ची अंशु यार अब की बार तो बात तय है कि हस्बैंड से ज्यादा वाइफ्स की वाट लगने वाली है, क्योंकि अगर हस्बैंड ये बात को एनालाइज कर ले कि उसकी बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगे, तो क्या है ना, हमारे पास लड़ाई करने की कोई वजह बचे ना। एंड जब तक ये हम ना करें, हमारा खाना हजम हो तो कैसे। अंशु आपसे यही कहना चाह रही है कि 25 सितंबर को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेल, इंडिया की लेजेंडरी मेंटलिस्ट सुहानी शाह आ रही हैं दोहा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड ये कोई सिर्फ मैजिक शो नहीं है, ये सिर्फ एल्यूशन भी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके बाद आप बस एक ही बात बोलेंगे, भाई ये किया कैसे, सिखा के जाओ प्लीज। इस वक्त अगर आप देखने की कोशिश करें तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स ऑन गोइंग है, जिसके चलते 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं ऑन योर टिकट्स बुकिंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से स्नूरो एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड करें, एस सिटी विजिट करें एंड अपनी टिकट्स जल्दी से सिक्योर करें। इनफैक्ट 160 रियाल्स में आपको 2 टिकट्स भी मिल रही है, भाई गजब फायदे का सौदा है, बाद में कहना मत मेरे दिमाग में तो था जाने का। आ रही है वो, आपके दिमाग के हाल को पहले से जानती है। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट, व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हैट ओ हॉट।
0: हॉलीवुड बोल्डा Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

ये ना घर का वो कोना हुआ करता था जिसे मम्मी पापा सबसे खूबसूरत तरह से सजाते थे। मिर्ची अंशु यार मैं बस उसी कोने की बात कर रही हूँ, उसी सेक्शन की बात कर रही हूँ जहाँ पर वो सारे मेडल्स एंड ट्रॉफीज रखी जाती थी जो मुझे और मेरे भाई को मिला करती थी। यार अगर पेरेंट्स की बात करें ना तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी बस यही होती थी कि उनका बच्चा जो है कुछ अच्छा करे एंड बस उसके अच्छे काम को रिकॉग्निशन मिले। एंड जितना हम खुश होते थे ना उनसे ज़्यादा खुशी उनकी आँखों में हमें देखने को मिलती थी। क्या दिन थे यार। वैसे कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस जो हैं वो सेकेंडरी, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस सेकेंडरी नहीं ज़रूरी हैं। ये कहीं ना कहीं आपके हौसले को ना और बढ़ाते हैं कि लाइफ में अच्छा करना है और भी करना है एंड औरों के लिए एक मिसाल भी बनना है। तो अगर आपको लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपने ऐसा कोई काम किया है तो मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि कतर टूरिज्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो उसके एप्लीकेशन अभी भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। फटाफट से उनकी वेबसाइट में जाएं, सारी की सारी कैटेगरी को डिटेल से चेक करें एंड अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसमें रजिस्टर करें। 16th of September इज गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर द एप्लीकेशन। एंड इस बार अगर आपने इन्फ्लुएंसिंग के जरिए लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस किया है टूरिज्म सेक्टर में तो भैया एक स्पेशल अवार्ड आपके नाम भी है। तो इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त अगर मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो मौका भी है और दस्तूर भी। भाई अवार्ड मिलने के बाद मुझे भूलना नहीं है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

देखो यार, जिस किसी ने भी ये बात कही है ना, बहुत खूब कही है। मिर्ची अंशु। हाँ जी, खेल कूद से जुड़ी बात की ही बात कर रही हूँ मैं। बचपन के दिन याद है कि गली में खेले गए उस खेल से ना जाने आपने और हमने कितने सारे लाइफ स्किल्स सीख लिए। नेगोशिएट करना, अपनी बात को किस तरह से मनवाना, औरों की बात को कैसे मानना, झुकना, डिटरमिन होकर आगे बढ़ना, डेडिकेशन, भाई क्या नहीं। लेकिन आज के डेट में जब बच्चे उस स्क्रीन में कुछ इस तरह से लॉक हो चुके हैं, तो घर से उन्हें कैसे आज़ाद किया जाए, ये जो है ना सबसे बड़ा सवाल है। यार, जब हम बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज ढूंढते हैं ना, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो मैंडेट होना चाहिए। किसी ना किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में अपने बच्चे को ज़रूर इन्वॉल्व करके रखिए। देखिए, बैडमिंटन स्टार प्रकाश पाडुकोन एक ही बात कहते हैं, जब एक बच्चा स्पोर्टिंग करियर की तरफ आगे बढ़ता है तो वो चैंपियन बने या ना बने, वो एक प्रोफेशनल बने या ना बने, लेकिन हाँ, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कुछ ऐसी स्किल सीख जाता है कि जिंदगी की इस रेस में वो ज़रूर एक चैंपियन के तौर पर आगे निकलता है। आजमा कर देखिए बात पते की। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La virva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मत तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार, ये
2: आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले, फोन ठीक
2: तो
3: नहीं होते
2: थोड़ी ना,
3: तो आपने नहीं बनाया, आपको पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: आप फालतू बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ। घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live.

जो सिंपली आफरीन कौन 89.6 मिर्ची वन। और पैसे की बात से ज्यादा काम की बात कुछ और हो सकती है क्या बंधुआ, बताओ मुझे। तो देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.10, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज जो है इट इज एट 76.22, बांग्लादेशी टाका के बारे में बात करें तो इट इज एट 33.96, एज श्रीलंकन रुपीज इज एट 92.02 एंड नेपाली रुपीज एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं 41.69 नेपाली रुपीज। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन 89.6, सुंदर रहेगा मिर्ची, it's hot.

0: पहनेंगे।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
2: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
2: The Mentalist Suhani Shah,

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी

0: यार इतना ही कहना चाहूंगी, ये जो बंदी है ना, चलती फिरती लाई डिटेक्टर मशीन है।
1: मिर्ची अंशु।
0: I'm pretty sure अंशु की इस बात से आप जरूर अग्री करेंगे कि लाइफ की किसी ना किसी फेस में आपको भी ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा किसी ना किसी शख्स को लेकर, कि कुछ हो ना हो बस मुझे इतना पता चल जाए कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। कभी टीचर्स को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, फ्रेंड्स फैमिली रिलेशनशिप्स को लेकर, हस्बैंड वाइफ के दिमाग में तो ये अक्सर आता है कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, ये मुझे आज तक कभी समझ ना आया। लेकिन यार ये हुनर एक ऐसी बंदी के पास है जिसने दुनिया के सारे ये सारे असंभव को संभव बना दिया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भारत की मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह। एंड सबसे खास बात, अपने गजब के कारनामे दिखाने, ये मैजिकल एक्सपीरियंस देने हमें कतर आ रही है ऑन 25th ऑफ सितंबर एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। एंड इस वक्त चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, अर्ली बर्ड ऑफर, जहां पर टिकट्स बुकिंग पे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इनफैक्ट 160 में आप 2 टिकट्स भी अवेल कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से स्नूनो एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना है और एस सिटी को विजिट कर टिकट्स जो है सिक्योर करनी है। बिलीव मी, दिस इज समथिंग दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस एट ऑल। एंड सुहानी के बारे में,
2: तो मैं चारों खाने चित कर देगी।

हाय यही कहा जा सकता है। तो बस आइए ये धाकड़ एक्सपीरियंस आप और हम मिलकर लाइव विटनेस करेंगे। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी.
3: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11.
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: चोर करता है.
3: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन.
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने
4: निभाया?
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्ड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.

0: यार सच कह रही हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस ना आपको सिर्फ कतर में ही मिलता है।
1: मिर्ची अंशु,
0: एक छत के नीचे ढेर सारी चीजें, एंटरटेनमेंट भरपूर एंड साथ ही मुफ्त में टेस्टिंग का मौका। कतर के अलावा कहीं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या? कतर के ढेर सारे एग्जीबिशंस जब भी मैं अटेंड करने जाती हूँ तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि भाई क्या बात है, मतलब एक छत के नीचे ना जाने कितनी रीजन की, कितनी वैरायटीज़ की चीज़ें ना हमें मिल ही जाती हैं। मिलती तो हैं लेकिन इतने दिलेर हैं भाई जो आपको टेस्ट करने के लिए वो आइटम्स की बाहर लगाते हैं ना, मेरा आधा पेट तो वहीं भर ही जाता है, मतलब डिनर का आधा इंतजाम हो जाता है। अविंग सिद्धार्थ, इस वक्त अगर आपको लगता है आपको लोकल डेट्स का काफ़ी शौक है तो टेस्ट नहीं खरीदने के लिए सीधा जाना है तो वो है सुख वाकिफ का ईस्टर्न स्क्वायर, जहाँ पे 10th अगस्त तक अगर कुछ चल रहा है तो वो है लोकल डेट्स एग्जीबिशन। बहुत सारी वैरायटीज हैं, मजा आएगा। जहाँ पे डेट्स हैं वहीं दूसरी तरफ डेट्स से बनी हुई बहुत सारी चीजें भी हैं यार, जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, घर ला सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ यार, गर्मी के दिनों में फुल्ली एसी टेंट में एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, करके आओ। ओनली अंटिल 10th अगस्त, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking.

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, ki 90s ki yaad ka pitara, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या आप पागल है क्या?
2: पागल आप है, पागल आप है
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी यार?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए।
2: आज के बाद घर से आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on Mirchi. It's hot.
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
6: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं. ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है. लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी. एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी. इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई. हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी. मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे. एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है. मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम. एंड यू नो व्हाट, एक बड़े इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम. किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम. लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था. एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है. एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम. और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म. फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए. फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम. आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार. दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए. प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए. जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़ी इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। He stepped in and he said, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
2: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे, तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी।
1: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bolda
3: only on Mirchi it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala, lekin use pata hai। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। DD1 पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गए यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना, तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना, तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख, तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी, कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन्स लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लेंस को लगाया नहीं।
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गाय
1: नहीं दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
5: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
9: Happy, taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
5: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
10: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health, because aap deserve karte hain best care.
5: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homes R Us. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
8: Visual media partner Reha Media.
5: Production partner Symphony.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए, और अधिकतना गाना वहीं से ही शुरू होता है राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है, क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद, वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन, जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए क्यों जिस्म थर थराए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
2: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
1: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।
2: रॉक रॉक।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Sara zamana, sara ka divana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
3: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामाज नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामाज तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामाज को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामाज यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यों की सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामाज देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामाज में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामाज में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Campana. Burka, burka. La fiesta la burka.
1: Mirchi, burka. उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
1: है? मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल
2: गया सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी जी,
1: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा।
1: हाँ?
2: 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूं?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने
2: ब्लड डोनेट करता है यूरिन में।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV ke shutter wale cabinet.
2: Yaadon ko chitthi.
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
6: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
8: Happy taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
6: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
9: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health. Because आप deserve करते हैं best care.
6: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homes R Us. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
7: Visual media partner Rehab Media.
6: Production partner Symphony.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई, कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

0: शाम हो गई शानदार। मिर्ची घड़ी का टाइम बता दें, 4:05 हो गए।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और मौसम चीटिंग करता है रे तू, हमें इतने बादल दिखाकर हमारे अंदर के अरमान जगाकर कहां छुप के बैठ गया है। वैसे हमने उम्मीद की थी बारिश की, लेकिन पसीनों की बारिश कंटिन्यू कर रही है। ह्यूमिडिटी का पारा जबरदस्त है, कतर के हर कोने में आपको ये ह्यूमिडिटी एकदम उमड़ उमड़ के महसूस होगी। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पानी पी के सूरज चाचू को कोसते रहो, कभी तो उनको हम पर दया आएगी और कहेंगे छोड़ो यार अब अपनी चमकान कहीं और दिखाते हैं। इनके लिए अब ठंडक वाली शाम और सुबह लाते हैं। हम दोपहर की डिमांड भी नहीं कर रहे सूरज चाचू, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है उसमें सुबह उठ रहे हैं तो भी लग रहा है दोपहर ही चल रही है। यहाँ पे ना गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब कुछ गुड आफ्टरनून ही चल रहा है ऐसा लग रहा है। फिलहाल अभी भी आ गए हम लेकर बातों की दुकान, अगले 4 साहबान मेहरबान कदरदान, कान टिकाई लो, वॉल्यूम बढ़ाए लो, अब कहर लेके आ गए गुरु रंधावा मिर्ची पर।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ।
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख। ये क्या है यार? ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता रहे,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे?
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए
2: यहाँ, फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

एक ही बच्चे हो यार। मैं कतर में रहने वाले सारे बच्चों से ही कहूंगा यार, तुम लोग वाकई में कितने लकी हो, आप लोगों के लिए इतनी फ्री मूवी स्क्रीनिंग होती है, दिल खुश हो जाएगा सोच सोच के। हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं था। कल्चरल विलेज फाउंडेशन कतारा शुरू करने जा रहा है सीरीज ऑफ फ्री मूवी स्क्रीनिंग, होगी अल्थुराइया प्लानिटेरियम में, बिल्डिंग 41। पूरे अगस्त भर इसे दिखाया जा रहा है, एंड बड़ी बात यह है इसमें ऑलमोस्ट ऑल एज के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, स्पेस एस्ट्रोनॉमी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये फिर आपके लिए है। यस, बता दें फ्री मूवी स्क्रीनिंग हो रही है द परफेक्ट लिटिल प्लैनेट, द ग्रेट सोलर सिस्टम एडवेंचर, स्टार्स, पोलरिस 3D एंड द जूला पेट्रोल, और वो भी इंग्लिश और अरबिक दोनों में होगी। बड़ी बात ये है कि ये सब हमारे जमाने में क्यों नहीं था भैया, क्यों नहीं था हमारे लिए? तो भैया स्पेस देखना, टेरिस पे जाओ आसमान देख लो, वो होता था। या फिर पापा बहुत खुश हुए थे, ग्लोब ला के दे दिए थे, जो आधे टाइम तो अलमारी पे था लेकिन आधे वक्त जब हमारे पास होता था हम घुमा घुमा के दुनिया घूम लेते थे। वैसे 22 मीटर की स्क्रीन वालों के लिए हमारे जैसे दौर के बच्चों के लिए वो ग्लोब ही बहुत था। हाँ जी, फिलहाल बच्चों के लिए ये जबरदस्त चीजें चल रही है। अगस्त 11 में प्रोग्राम जो है वो दो शोज का है, इस बात को याद रखिएगा, परफेक्ट लिटिल प्लैनेट 5 बजे शाम से। तो बच्चों अपनी बुकिंग करा लो, क्योंकि ये सब कुछ आपको फ्री मिल रहा, और एक हमारा दौर था सब कुछ मिलता ही नहीं था, छोड़ दो कुछ भी नहीं मिलता था। सर आप लोग लकी हो, इस मौके का फायदा उठाओ और स्पेस की दुनिया के बारे में और ढेर सारी चीजों को जान जाओ। लेकिन तब तक ले सुनिधि चौहान, आप गाना गाओ मिर्ची इट्स हॉट।

ऐसा हो कि आपसे कोई कहे कि आप आंखें बंद करो और अपनी फेवरेट मूवी के बारे में सोचो, फिर आप आंखें बंद कर लें और आप अपनी फेवरेट मूवी के बारे में सोचने लगें, फिर वो आपसे कहे कि आप उस फिल्म के सीन को याद करो, उसके पोस्टर में कलर भर दो और न जाने क्या क्या आपको बोलती है, और फिर आप उसे कर लेते हो। फिर आपके कंधों पे कोई टच करता है और उसे पता लग जाता है कि वो कौन सी फिल्म थी जिसको आप याद कर रहे थे। ये और कोई नहीं कर सकता, ये सुहानी शाह कर सकती है। एंड सुहानी शाह ने यही किया था जब एक साथ हस्बैंड वाइफ पेयर बोले तो अदिति राव हैदरी एंड सिद्धार्थ को एकदम से शॉक कर दिया था, जहां पर उन्होंने सिद्धार्थ की फेवरेट मूवी पूछी थी एंड अदिति से पूछा था कि आप किसी जगह पर हो जो आपकी फेवरेट प्लेस है। फिर क्या है, दोनों का एकदम परफेक्ट आंसर निकला। जहां अदिति को अपने ग्रैंड मदर हाउस की याद आई, वहीं अपने सिद्धार्थ को पिक्चर इरुवर याद आई। सोचिए कि ये लड़की किस कदर आपके दिमाग को पढ़ सकती है। और इसी मैजिक को, इसी स्पेल बाउंड मोमेंट को देखने आपको आना है 5000196 पे नहीं, जितनी जल्दी हो सके टिकट्स बुक करानी है जाकर मेंटली शिवानी शाह लाइव इन करते फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड यू कैन बुक इट एट राइट नाउ एट एस सिटी। यस, नूनू पे जाकर टिकट बुक कर लो। अर्ली बर्ड ऑफर कंटिन्यू कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, दोस्तों यारों को बता दो, क्योंकि सुहानी शाह जो करने जा रही है ये अब तक आपने कतर में कभी पहले नहीं देखा है। प्रेजेंटेड बाय आईपी द मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर। भाई हमारे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन पापा जोन्स, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ पार्टनर किम्स हेल्थ, इसके अलावा शॉपिंग पार्टनर डाइसो जापान, होम्स आर अस, ये सारे के सारे लोग एक साथ आए हैं। हमारे ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, हमारे प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, ये सब ताकि आपको पाए एक बेहतरीन शाम। और मेंटलिस्ट सुहानी शाह का ये शो देखने के लिए एससीटी स्नूनू पर जाके टिकट्स बुक कर लो और मस्मोर गौरव को थैंक यू कह दो, जो आपको याद दिला रहा है कि आप क्या मिस करने वाले हो अगर आपने टिकट बुक नहीं की तो। मिर्ची थॉट तेरे

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। टीएनसी supply.
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: है श्रीराम चंद्रा श्रेया घोषाल मिलकर ये बलमा का रिमिक्स सुनाया किसने, लेकिन भैया बलमा नहीं और जलवा, अरे जलवा दिखा रहे सूरज चाचू।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट, पहले तो सिर्फ इनकी तपन से परेशान थे, अब ह्यूमिडिटी के साथ हम चरम परेशान हैं। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा है 41, दिन का मिनिमम अराउंड 34 आएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज बादलों की आवाजाही के बीच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बस ऐसा लगा धोखा दे रहा है ये बादल। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं, लेकिन 50% वाली ह्यूमिडिटी ने हम सबको आज पसीने छुड़वा दिए। घबराना नहीं है, बस आराम नाल पानी पीते रहना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, और कानों के सुकून के लिए तो मिर्ची है ही है। 89.6 मिर्ची वन पर ये था मौसम का हालचाल, मस्त मौला गौरव के साथ मिर्ची इट्स हॉट।

0: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
0: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
0: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का. इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: एंड ये आवारा अपन गाना खत्म हुआ और एक आवारा चलाया, नाम है
2: मस्त मौला गौरव।
1: मुझे अच्छे से याद है दिन भर क्रिकेट खेल के थकार के जब हम घर लौटते मम्मी से आ गए आवारा गर्दी करके। फिलहाल आवारा अपन फिल्म तो आ रही है मस्त मौला गौरव आपके साथ है एंड बारी है टाइम बताने की, 5:04 से थोड़े ज्यादा हो रहे।
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: तो चलिए जी हम आपके साथ आगे देवी और सज्जनों, बारी आ गई इस घंटे खेलने के बाद जैसे कहते हैं वाह वाह वाह वाह। और पहचान कौन में एक आवाज आती है और आज ये फिटेस्ट हीरो की आवाज जरा सुनिए।
4: चीट डे बी लाइक हॉरर फिल्म, रेड वेल्वेट केक, पिज्जा, वनीला कपकेक, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज,
5: मैं ये सब खा सुबह से दिस इज नॉट इवन द लिस्ट।
4: रात तक,
1: सुबह से रात तक ये चीट डे में खाते हैं ये सारी चीजें।
4: चीट डे बी लाइक हॉरर फिल्म, रेड वेल्वेट केक, पिज्जा, वनीला कपकेक, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज,
5: मैं ये सब खा
4: सुबह से रात तक।
1: बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ये लिस्ट इतनी लंबी है कि सोच रहे होंगे यार ये कैसे खा सकता है, लेकिन ये इंसान खा रहा है। 5:00 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है, आपको बताना है ये जो आवाज आपको मैं सुना रहा हूँ चीट डे विल बी हॉरर, वो किसकी आवाज है?
4: चीट डे बी लाइक हॉरर फिल्म, रेड वेल्वेट केक, पिज्जा, वनीला कपकेक, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज,
5: मैं ये सब खा
4: सुबह से
5: दिस इज नॉट इवन द लिस्ट।
1: 5:00 ये नंबर है जिसपे आप वॉइस नोट यानी कि अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो 5:00 पर कि गौरव जवाब है फला हीरो, ये किसकी आवाज है यही आपको बताना है। मैं इंतजार कर रहा हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आते हैं और अचानक से किसी भी भाषा में है आपको याद हो जाते हैं, हालांकि थोड़ी भाषा की पकड़ उसमें इंपॉर्टेंट भी होती है। पर ऐसे ही एक गाना, तन्ने साम साम रख दिए नवनी पिटारे नी नी नी नी नी नी नी। आहा, ये अगला गाना बंजारे बैरन जो है यहां पर आप सुनने जा रहे हैं बंजारे की आवाज में।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो, बोल रही है यार?
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अब गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या आप पागल है क्या?
2: पागल आप है, पागल आप है
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
2: बोले चले जा रहे। बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए।
2: आज के बाद घर से आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटा।
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
6: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब है।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: लगे पंजाब लग रही है प्यारी लड़की। कल प्यारा सा गाना बादशाह अरिजीत सिंह की आवाज में खत्म हुआ, सोलमेट नाम था, और आपके लिए इवनिंग मेट आ गया जिसका नाम है दोस्तों। जब हम साथ होते हैं तो इस घंटे खेलते हैं वो जिसे कहते हैं और पहचान कौन में आज जो आवाज मैंने सुनाई है वो ये है।
1: चीट डे बी लाइक हॉरर फिल्म। रेड वेलवेट केक, पिज्जा, वनीला कपकेक, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज,
2: ये सब खा सकते हैं दिस इज नॉट इन द लिस्ट।
0: हाँ जी, और भाई साहब किसी से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई सुनने में।
3: हाय गौरव, गुड इवनिंग, दिस इज आशिक।
0: हाँ आशिक भाई,
3: आई होप यू डूइंग वेल। आई थिंक द वॉइस इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैटरीना कैफ।
0: अरे नहीं भाई, कैटरीना कैफ नहीं है, ये कोई एक्टर है।
4: फेमस मोला गौरव द वॉइस, ही इन द एक्टर नेम इज टाइगर श्रॉफ। माय नेम इज योगेश।
0: हाय योगेश,
5: सो इट्स द वॉइस ऑफ टाइगर श्रॉफ। गुड इवनिंग गौरव।
0: गुड इवनिंग,
5: हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, यूसुफ हियर।
0: भाई कोई कैटरीना बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, लेकिन सही जवाब इज टाइगर श्रॉफ। Yes, Tiger Shroff is the right answer. And बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी लिखा है। हनी ने गलत लिखा है। हनी भाई आपका जवाब भी गलत है। Yes, इन्होंने लिखा है ऋतिक रोशन। नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। Well, इसके अलावा अब्दुल का बिल्कुल सही जवाब आया है, आकांक्षा का जवाब सही है, आसफ का जवाब सही है, एंड अगर बात करें अजीत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है टाइगर श्रॉफ। साथ ही साथ रितेश ने लिखा है टाइगर श्रॉफ, बहुत अच्छी बात है। तारीख, टाइगर श्रॉफ बिल्कुल सही, एंड मेहताब, टाइगर श्रॉफ बिल्कुल सही। टाइगर श्रॉफ ही हैं जिनकी आवाज मैंने आज सुनाई है, एंड जिन लोगों ने गलत जवाब दिया है उनको शाय करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है। अगला गाना डोंट बी शाय माय हनी मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

ये है हमारी लता जी की आवाज का जादू जो इस वक्त आपने सुना। मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सज्जन तरह ही कहना चाहता हूँ, मौसम का जादू तो देख लिया ये गाने के थ्रू, लेकिन फिलहाल असली जादू जो हम सबके दिमाग पर करने वाली है स्वानी शाह, उसे देखने की बारी आने वाली है। यस, 25th of September QNCC में द मेंटली स्वानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। याद रखिए, आप अभी टिकट बुक कर सकते हैं SCTSNUNU पर। मेंटलिस्ट क्या करता है, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं। मैं कहता हूं मेंटलिस्ट वो होता है जो स्टेज पर किसी को बुलाता है और अपने दिमाग की रीडिंग से, अपने हाथों की जादूगरी से, अपने दिमाग की सफाई से आपको मजबूर कर देता है ये सोचने पे कि यार ये सच में इसका दिमाग पढ़ पा रही है या कुछ तो कमाल किया इसने। वेल, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह, जिनको आपने अब तक सिर्फ टीवी पर देखा है या इनके वीडियोस आपके इंस्टाग्राम रील्स पर आए हैं, यूट्यूब पर आए, अब वो आपके सामने आ रही है 25th of September को एट QNCC। एंड अपनी टिकट्स बुक कराने के लिए आपको जाना है SCTSNUNU पर, जहां पर इस वक्त चल रहे इनॉग्रल ऑफर, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइसेस पर टिकट्स। एंड अकेले ऐसे शो का मजा आते नहीं, इसलिए अपने साथ अपने दोस्तों को तो लेके ही आना है ताकि सब साथ में रहो और क्या पता आप से किसी एक दोस्त की दिमाग रीडिंग हो जाए और मेंटली चलानी जाओ सही स्टेज पे बुला ले। यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन दोस्त। फिलहाल के लिए अपनी टिकट्स बुक करो और नसीब रहा तो बहुत कुछ नया सीख पाओगे, देख पाओगे और समझ पाओगे। एडी दिया है SCT पर टिकट्स अर्ली बर्ड ऑफर के साथ। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: स्टोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने
4: निभाया?
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव, रेडियो स्टेशन का मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai? Ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala. Lekin usse pata hai. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज़ नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
8: The Mentalist Suhani Shah.

कभी सोचा था आफत पे जो आदमी बोलता है फो आफत आई उस पे इतना बढ़िया गाना भी बनता है। यस, जो भी आपने गाना गुल्लक किया यानी कि सुना, आदित्य सिंह शर्मा अमिताभ भट्टाचार्य ने मिलकर गाया, लेकिन जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पर्स की यानी कि वॉलेट की बदल देता है ये काया। राइट नाउ की बात करें, एक कचरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 10 पैसे भारतीय मुद्रा में आपको मिल रहे हैं। वही वन कचरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 92.02, पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कचरी रियाल के बदले 76.22 76.22 पाकिस्तान रुपीज, तपाई को नेपाली रुपीज का रेट 6 बहनी, एक कचरी रियाल के बदले 41.71 को भलचर रेट दाई, हाँ जी 41.71 का रेट चाई, अगर घर भेजन लाए तो सही टाइम 6 पैसा भेजन लाए। वेल इसके बाद अगर बात करें तो बंधु बांग्लादेशी टका दादा एक्टा कचरे रियाल के बदले 33.96 तो 33.96 बाड़ी तीके भेज दो, हाँ जी पैसा एकदम सही रेट में मिल रहा है। मस्त मोलो घर इतने कहेगा सैलरी आई है तो घर भेजो, यहाँ भी रखो और आनंद ही आनंद करो क्योंकि इसीलिए तो आए हो। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking, mama.

0: आदित्य त्रिकारी की आवाज में साहिबा सुनाया किसने? जब आपके साथ हूँ तो घड़ी का टाइम भी बताएंगे, ये कैसे होगा 6:03।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अब फिलहाल के लिए प्रीति जिंटा पेपराजी से बहुत गुस्सा है। हाँ जी, पिछले दिनों किसी पेपराजी ने बोल दिया, देखो प्रीति जिंटा ने कैसे इग्नोर किया बंटवारे के सेट पर आमिर खान को। फिर क्या है, जैसे ही वो फोटोग्राफर्स को देखती है दूसरी तरफ चली गई, लोग चिल्लाए गए तो उन्होंने कहा, हेलो तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत खराब कंटेंट लिखा है। हाँ जी, उन्होंने लिखा है कि क्लिकबेट कंटेंट ठीक नहीं है, मैंने आमिर खान को उस दिन नहीं देखा था, मैं शूट के लिए जल्दी जा रही थी और इस चक्कर में उन्हें नहीं देख पाई, और 1947 बंटवारे के टाइम वाली फिल्म की जो प्रमोशन थी उसमें भी मैं जल्दी फ्लाइट पकड़ रही थी इसलिए मैंने आमिर खान को नहीं देखा, लेकिन तुम लोग कुछ भी फैला रहे हो कि मैंने इग्नोर किया। अब भाई मस्तमौला गौरव को लगा कि जब बात इतनी है तो आप तक पहुंचा दें और सवाल भी पूछ ही लें। अब सवाल ये पूछ रहा है मुझे कि आपको याद है प्रीति जिंटा एंड सनी देओल इससे पहले किस फिल्म में साथ नजर आए थे, क्योंकि फिल्म बंटवारा 1947 आने वाली है, प्रीति जिंटा इसमें सनी देओल की वाइफ बनी है, और मैं सोच रहा हूं कि क्या आप बता सकते हैं सनी देओल और प्रीति जिंटा इससे पहले एक साथ किस फिल्म में नजर आए थे। 5000 1896 5000 1896 पर आपको बताना होगा अगर आपको याद है सनी देओल एंड प्रीति जिंटा एक साथ इससे पहले किस फिल्म में नजर आए थे। कोई भी फिल्म याद आ रही है जरूर बताइए, हम अपने याददाश्त की मेमोरी पे जा रहे हैं तो हमें कुछ याद तो आ रहा है, स्पाई वर्ल्ड से रिलेटेड एक मूवी तो थी। 5000 1896 पर मस्तमौला गौरव आपके साथ, क्या बता सकते हैं प्रीति जिंटा एंड सनी देओल एक साथ किस फिल्म में नजर आए थे। फिलहाल तो वो बंटवारा 1947 में नजर आने वाले। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, पहले तो ये पुराना गाना था, इसका 2.0 वर्जन आ गया। आप अपने जवाब का वर्जन 5000 1896 पर प्रीति जिंटा एंड सनी देओल एक साथ किस में आए थे 5000 1896 जल्दी जवाब भेजो। मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में तबाही और ये गाना, वीडियो देख लो भैया, तबाही है। 89.6 जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, KGF वाले हमारे यश भाई एंड उनके साथ ग्यारह अडवाणी, अलग लेवल माहौल चल रहा है। इन सबके बीच मस्त मौला गौरव आपसे सवाल जवाब कर रहा है। 5000 1896 पर आपको ये बताना है कि प्रीति सिंटा एंड सनी देओल एक साथ किस फिल्म में नजर आए थे। यही है आज का सवाल। 5000 1896 पर अपना जवाब जरूर भेजिए। वैसे बता दूं कि पिछले दिनों बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें लोगों ने कहा प्रीति जिंटा ने दो दो इवेंट में आमिर खान को इग्नोर किया। एक तो फिल्म बंटवारा 1947 के सेट पर जहां पर उन्होंने उन्हें देखा नहीं, ऐसा प्रीति जिंटा का कहना है, और दूसरा फिल्म के प्रमोशन वाली टाइम पर भी वो हड़बड़ी में बिना आमिर खान को देखे निकल गई। क्या आपको लग रहा है ये सच है? हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि प्रीति जिंटा ने कहा है कि मैं हड़बड़ी में थी, हो सकता है इसलिए इग्नोर कर गई हूं, पर आप लोग इसका ज्यादा मतलब निकाल रहे हैं। बिल्कुल मिलाकर हमने कहा छोड़ो मट्टी पाओ, हमें क्या करना है, हमें तो अपना सवाल जवाब करना, और सवाल मैंने पूछ लिया बंटवारा फिल्म के हीरो बोले तो सनी देओल एंड प्रीति जिंटा पे। इन दोनों को आपने इससे पहले किस फिल्म में देखा था? 5000 1896 पर जवाब भेज दो मेरे वास्ते, क्योंकि अगली बार हम इस जवाब के साथ आएंगे। लेकिन वास्ते ध्वनि भानुशाली निखिल डिसूजा, अगर वास्ता की बात करें तो ये कतर में बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। मिर्ची थॉट।

0: गाना खत्म हुआ कोक स्टूडियो में और ये सुनाया किसने मिर्ची स्टूडियो से?
1: मस्त मौला गौरव।
0: और जब मैं आपको ये सुना रहा हूँ तो इस बीच मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड सवाल ये था कि प्रीति जिंटा एंड सनी देओल एक साथ किस फिल्म में नजर आए थे?
2: हे गौरव, सनी देओल और प्रीति जिंटा मेरे ख्याल से उनकी मूवी थी हीरो, द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा भी थी उसमें। दिस इज स्मिता विद यू, एंजॉय।
3: हाय गौरव, द आंसर इज द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। ओके, सनी देओल और प्रीति जिंटा इज माय गेस।
0: ओके ओके,
4: हाय गौरव, आई थिंक इज हीरो।
0: हीरो,
4: हीरो जो मूवी थी आई थिंक उन उसमें ये दोनों एक साथ थे, आई थिंक सो।
5: हाय मिथुन, प्रीति जिंटा और सनी देओल का जो मूवी एक साथ बना था वो चैंपियन था।
0: ओके
6: जी गौरव भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो?
0: गुड इवनिंग।
6: ये मूवी है जाल और रेडियो मिर्ची इज हॉट।
0: रेडियो मिर्ची इज हॉट भैया जी, सुपर हिट लव स्टोरी ऑफ स्पाई, द हीरो, फर्ज, जाल, ये कुछ फिल्में थी जिसमें दोनों के दोनों साथ नजर आए और हमारे कतर के मिर्ची लिसनर्स कमाल नजर आए भाई। यार ऑलमोस्ट सारी फिल्में लोगों को याद है, ये बताता है कि सनी देओल की जो पिक्चर होती है ना उसका इम्पैक्ट ढाई दशकों तक लोगों पे होता है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

तुम मिलो एक शाम को, और अगर वो शाम हो जहाँ पर सुहानी शाह का साथ हो तो माहौल ही अलग है। 89.6 पर जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह कमिंग टू कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। मेंटलिस्ट क्या होते हैं पहले हम आपको ये बता दें, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि वो कुछ ऐसा कर देंगे जो आपने कभी यकीन नहीं किया होगा, आपकी जिंदगी के पुराने 50-100 पन्ने खोल देंगे, ऐसा नहीं है। मेंटलिस्ट आपके सामने दुनिया में कुछ ऐसे कारनामे करते हैं जिसको देखकर आप हक्के बक्के रह जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी मेंटलिस्ट सुहानी शाह क्या कर सकती हैं, वो किसी हीरो से पूछ सकती हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। उस हीरो को जिंदगी में कुछ भी सोचने का होता है, लेकिन वो वही सोच रहा होता है जो सुहानी चाहती है। एंड फिर क्या है, सलमान खान जैसे स्टार को कहती है आप फ्लाइंग कारपेट के बारे में सोचते हैं, सलमान खान पागल हो जाते हैं, लेकिन वो फ्लाइंग कारपेट वो अपनी पेंटिंग ब्रश से बना रहे होते हैं। सुहानी जब ये कहती कि वो पेंटिंग ब्रश आपने किसी को दिया है, सोच लीजिए, जैसे ही सलमान खान कहते हैं हाँ मैंने सोच लिया मैंने किसको दिया है, और जैसे ही वो कहती है ठीक है ये ब्रश मैं जो आपको दे रही हूं अब इस पे नाम देखो, और नाम दिखता है शेरा का, फिर क्या है, सलमान भाई कहते हैं कैसे किया। एंड ऐसा जादू जब कोई करता है ना तो फिर इंसान का दिमाग जो है वो भरना ही जाता है, सलमान खान का, आमिर खान का, शाहरुख खान का, किसी का भी, मतलब जिसका भी दिमाग हो ये लड़की कर लेती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट कराइए, हम फर्स्ट करके। हाँ जी, पीयूष मिश्रा स्टाइल बोले हम फर्स्ट। और अपनी फर्स्ट टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो, जल्दी जल्दी जाओ इस टूनू सिटी पर, बोले तो एस सिटी पर, एंड अपनी टिकट बुक कर लो क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर आपको अभी मिला है, और इसके बाद मिले ना मिले हम कौन जाने। हाँ जी, अर्ली बर्ड ऑफर का फायदा उठाइए, अपनी टिकट बुक करिए ताकि आप सुहानी शाह के साथ वो शाम देख पाए जहां पर बहुत सारे कारनामे होने वाले हैं, ऐसे कारनामे जो आपने शायद पहले कभी कहीं देखा नहीं, कभी कभी सुना नहीं। और जब इस टिकट के बारे में आप जानेंगे तो आपको यही लगेगा कि सही टाइम पर सही रेट पर टिकट मिल गई। जल्दी जल्दी अपनी टिकट बुक कर ली, एंड मस्त मौला गौरव के साथ अगला गाना एंजॉय करें अरिजीत सिंह के आवाज में, हारिया। और ये थी मेरी पीयूष मिश्रा की मिक्री अंदाज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे. तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क. हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी.
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है. इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
5: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं. या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: माशुका महमूद राघव चैतन्य अरुवा के की आवाज में हमने सुनाया और घड़ी का टाइम भी बताएंगे ताकि आपको घड़ी पहनने की जरूरत ही ना पड़ा करे। 7:04 शाम के
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चलिए जी, बस इतना ही कहेंगे कि कतर खजूर खरीदने के मामले में हजूर नंबर वन हुआ दुनिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। 11th लोकल डेट फेस्टिवल जो सूख वाकिफ में कल तक चल रहा है, यानी कि आज 9th है, कल 10th है लास्ट डे, अब तक 153,000 किलो फ्रेश खजूर बिक चुके हैं। Yes, और ये बता रहा है कि 75,000 विजिटर्स जो वहां पहुंचे, उन्होंने लगभग हर किसी ने 2 किलो के लगभग तो मामला खरीद के ही रखा है। एंड इतने कहना चाहता हूँ 153,000 केजी ऑफ फ्रेश डेट्स खजूर जो है, उसके अलग अलग वैरायटी की अगर बात कर लें तो वो बिकी है। सबसे ज्यादा पसंद की गई है शीशी खजूर, यस 30,691 किलो इसकी सेल्स है। इसके बाद खनेजी है, फिर बरी है, खलास है, एंड ये सारी अलग वेराइटीज हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ लोकल फ्रूट्स भी मिल रहे थे, और ये सारी की सारी डेट्स हमारे वहाँ अपने यहाँ हुई है, लोकली ग्रोन है, यानी कि कतर सेल्फ सस्टेबिलिटी के मामले में अगर खजूरों की बात की जाए तो यस बिल्कुल उगा रहा है, और उसका इतना मामला लख रहा है कि पूरी दुनिया कह रही है भैया खजूर तो हमारे कतर के ही है। जो 114 फ्रेश डेट फार्म्स इसका हिस्सा बने, 11 फ्रूट फार्म्स जहां पर आपको सीजनल फ्रूट मिल जाए वो भी इसका हिस्सा बने। एंड अगर आप अभी तक चूके हैं तो अगस्त 10 यानी कि कल की तारीख आखिरी बार शाम 4 से रात 9 बजे तक ये लोकल डेट फेस्टिवल लग रहा है, जाइए एंजॉय करके आइए और कुछ खरीद लीजिए ताकि अगली बार आप कहें कि अरे यार अब उस मेले का इंतजार रहेगा। चलो जी, आम के मेले के बाद खजूर की खुशबू बिखरी है हमारे ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में, अब इसके बाद क्या खास आएगा इसके लिए इंतजार करते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर आएगा और मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी हम तक ये जरूर पहुंचाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं 89.6 मिर्ची वन पर, थोड़ी सी शरारत कर लेते हैं, बचपना अपने अंदर का जिंदा जो रखना, इट्स हॉट।

0: Pepe Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabbana.
1: Burga, burga. Na vidva la burga.
2: Mirci, burga.
3: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
4: जी बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
4: कहाँ सर?
3: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
4: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
3: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए, आगे ले आओ।
4: मैं दे दूंगा।
3: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी, इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
4: 4 यूनिट?
3: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
4: चाहिए
3: इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
4: क्या चढ़ाना?
3: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
4: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना?
3: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
4: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब चढ़ाऊं?
3: आपका ग्रुप मिल
4: गया सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: यूरिन का भी कुछ होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
4: जी।
3: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
4: क्या कह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा।
3: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
4: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
3: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
4: जी
3: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
4: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

0: अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रोहित शेट्टी सब फेल हैं इस दादी के आगे। और वो सारे एडवेंचर फ्रीक भी इनके सामने छोटे से हैं, जिनको लगता है कि जिंदगी किसी भी एज में जब बात एडवेंचर की आती है तो वो नंबर वन है, क्योंकि इन दादी ने 97 इयर्स की एज में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
1: क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
0: हाँ, वही कह रहे हैं जो रिकॉर्ड सामने आया है। इनका नाम है एलिजाबेथ बेटी ब्रोमेज, ग्लोस्टरशायर यूके की है। एंड बड़ी बात यह है, इन्होंने हाल ही में आसमान में प्लेन के ऊपर खड़े होकर विंग वॉकिंग की है और गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड को, जो इन्होंने खुद ही बनाया था, अपने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एंड शी बिकेम ओल्डेस्ट फीमेल विंग वॉकर इन द वर्ल्ड, यानी कि चलते प्लेन के ऊपर ये विंग पे वॉक करती है। और ऐसा कारनामा इन्होंने पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी इन्होंने किया है। 87 की एज से इन्होंने ये विंग वॉकिंग शुरू की थी। एंड हम कहते हैं कि जिंदगी में बहुत लेट हो गई अगर आप 50-55 पार कर गए, कभी लेट नहीं हुई। वेल, 6 बार ये डेयरडेविल स्टंट कर चुकी हैं इनकी एज का, और कोई भी इंसान इस बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। और इसी अगस्त के महीने में पूरी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। एंड शी बिकेम द ओल्डेस्ट फीमेल विंग वॉकर इन द वर्ल्ड। इनके जोश एनर्जी को देखकर तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे वहां इतने में या तो दादी खटिया पे होती है या फिर फोटो पे टंगी होती है, लेकिन इनके जोश के आगे बड़े बड़ों का जोश फेल है। और जब अपनी जिंदगी जीने की बात आए तो इनको हमें अपना आदर्श आइडल बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी बकेट लिस्ट में 50s के प्लान तो है, 40s के प्लान तो है, अर्ली 60s के रिटायरमेंट के बाद के भी प्लान है, लेकिन 97 का ये प्लान, ये दादी बकेट लिस्ट को अब हमें बढ़ाने के लिए आपने मोटिवेट कर दिया, थैंक यू। और इसीलिए कहते हैं एज इज जस्ट द नंबर, इस बात को हमें इनसे सीखना चाहिए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: एक कुड़ी जिदा नाम सुहानी है, कतर आ रही है।
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: Yes, I'm talking about IPE, the mentalist Suhani Shah live in Qatar for the very first time, and एक ऐसा शो जो इससे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे स्क्रॉल कर देखा है, उसे अब आंखों से देखने की बारी मिल चुकी है। Yes, रूबरू, फेस टू फेस, सामने सामने होंगी सुहानी और करेंगी वो सारा मेंटल शो जो आपको एकदम चौंका देगा, जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे गिरेगी पॉइंटिंग केविन पीटरसन, या फिर ऋषभ पंत से लेकर हमारे केएल राहुल तक हुए, या फिर हमारे बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान से लेकर सिद्धार्थ तक, एंड वो सारे लोग जिनको सुहानी शाह ने एक बार जब अपनी गिरफ्त में लिया तो सिर्फ हक्का बक्का नहीं, एकदम से शॉक करके छोड़ा। एंड सुहानी शाह द मेंटलिस्ट, जो कि दिमाग से खेलती हैं एंड दिमाग से वही आपको सोचने पर मजबूर करती हैं जो वो चाहती हैं, कैसे कर पाती हैं यही तो आपको देखने आना है। एंड टिकट्स बुक करनी है जाकर SCTC मुनू पर, यस, जहां पर अभी अर्ली बर्ड ऑफर चला है, जितनी जल्दी हो सके अपनी डिस्काउंटेड प्राइस वाली टिकट्स ले लीजिए, क्योंकि एक बार ये मौका चूका तो फिर आप इस अमेजिंग इवनिंग को देखने का मौका भी चूक जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हम और आप जिंदगी में कुछ अलग देखना चाहते हैं। अब तक हमने बहुत सारे कॉन्सर्ट देखे, लेकिन दिस is something different, out of box, and आपने imagine किया वैसा। 25th of September, QNCC में tickets available है SCT पर discounted price पर, जाइए ले लीजिए और मस्त मौला गौरव को thank you कीजिए जो आपको इतनी अच्छी चीजों के बारे में बता देता है। फिलहाल तो मलंग हो के अगला गाना वेद शर्मा की आवाज में मिर्ची पर, it's hot।

बोट शो के लिए प्लेन पे डिस्काउंट मिल रहा है। 89.6 मेरे जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है और ये सिर्फ कतर कर सकता है। यस, अगर आप कतर बोट शो 2026 अटेंड करने के लिए नवंबर के महीने में आना चाह रहे हैं तो आपके पास एक गुड न्यूज है। यस, हम बता दें ओल्ड दोहा पोर्ट पर कतर एयरवेज बोट शो का ऑफिशियल ट्रेवल पार्टनर है और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई कतर एयरवेज ने ग्लोबल नेटवर्क से आने वाले सारे विजिटर्स को, यॉट ओनर्स को, लग्जरी ट्रेवलर्स को एक एक्सक्लूसिव फ्लाइट डिस्काउंट देने की बात कह डाली है। यस, यानी कि अगर आप कतर बोट शो का हिस्सा बन रहे हैं साल 2026 में 7 नवंबर तक आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि ट्रेवल करना होगा आपको 25 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच। रिमेंबर, जब इवेंट चल रहा होगा उसी दौरान आपको ट्रेवल करना है लेकिन इसकी बुकिंग आप 7 नवंबर 2026 तक कर सकते हो और ये दो ऑफर दोनों ही यानी कि प्रीमियम और इकोनॉमी क्लास दोनों पे आने वाला है। आप वन वे फ्लाइट बुक करो या रिटर्न, दोनों में ही ये ऑफर मान्य होगा। यानी कि अगर आप कतर का ये बोट फेस्टिवल अटेंड करने आ रहे हो एज अ विजिटर तो आपके पास मौका है कतर एयरवेज की फ्लाइट को डिस्काउंट पे बुक कर करने का। ये सोचिए कितनी बड़ी चीज है कि हमारे वहां आप बोट शो इवेंट में आएंगे लेकिन डिस्काउंट एरोप्लेन तक का पाएंगे। ये है हमारे कतर की ब्यूटी। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं एंड अपने दोस्तों यारों को ये अच्छे वाले ऑफर के बारे में बता रहे हैं। मस्त मौलक और लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में। तब तक ले हबीबी यही रहिए मिर्ची पर। इट्स हॉट, मस्सलामा।

أشهد أن لا

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: Ghana Indie Top 10.
4: Kanika ke saath on Mirchi.
5: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest pop countdown of the week. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना बताना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। शो में हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स एंड कॉम्पोज। The song features Elvish Yadav. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 10। स्टे कनेक्टेड फॉर द काउंटडाउन। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
6: नंबर 10।
7: हाउ

0: अराउंड साढ़ी सुन सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ऑन गाना नंबर 10. ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम पे, फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. कई बार ऐसा होता ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाएं, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस वो कहीं से भी आप सुने यानी एकदम पूरा गाना याद आ जाता है. सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है. हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलेडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं. एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह. चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करें ना करें, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी. माय फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोज कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे. नाउ @RJKanika इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ. जल्दी जल्दी @RJKanika पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है. @RJKanika इंस्टाग्राम पर आगे मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है. बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौर. गाने का नाम है बैंगल्स. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9. उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 9.

0: Blana Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi It's hot
2: Mirchi
3: Iska bana uska bana sakka bana Rabbala Murga murga Naviyat wala murga Mirchi murga
4: Hello
5: Hello सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
4: क्या हो गया
5: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
4: क्या हुआ, क्या है
5: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
4: कब दिया था आपने?
5: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
4: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
5: चंद्र फोन लेके आ,
4: डिस्प्ले आ रहा है।
5: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
4: फोन आ रहे हैं और ओके।
5: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
4: बेल बज रही है।
5: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
4: अरे आपने लिया कहाँ से था?
5: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
4: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
5: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
4: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
5: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले तो, फोन ठीक
4: तो
5: नहीं होते
4: थोड़ी ना।
5: आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
4: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
5: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
4: तो आप हमें फोन कर रहे हैं गुब्बारे वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
5: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
4: फोन थोड़ी ना होते
5: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
4: फोन मत करिए,
5: यहाँ फोन मत करिए यार।
6: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
4: हेलो
6: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
4: अरे सर काम का टाइम है, आप
6: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
4: कुकड़ू कु।
6: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ, कुकड़ू को बोल दिया।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे, अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 गानिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनेगा. कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanega. यू नो, हर पार्टी में एक टाइम आता है जब सिर्फ पंजाबी गाने चल रहे होते हैं. कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में हमारा एसोसिएशन विद पंजाबी म्यूजिक ही सिर्फ ये था. एंड जब मैं कहती हूँ ना हमारा, आई मीन वो लोग जिन्हें पंजाबी बोलनी या समझनी नहीं आती, और जितनी भी आती है वो सिर्फ गानों से आती है, अपने फेवरेट आर्टिस्ट और सिंगर से आती है. लेकिन पिछले 4-5 साल में आई हैव सीन अ मैसिव ट्रांजिशन. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माई मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती, बिकॉज आर्टिस्ट लाइक AP टिल्लों, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा बटिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड, काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है. पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुंवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी, मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचें. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी, लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Crazy For You by Coer this week on our Gana Spotlight at RJ Kanek on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट RJ Kanek पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीश और कारण, हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5.
1: नंबर 5.

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.
1: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी है, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। ट्रस्ट मी, इट रियली मैटर्स अ लॉट। कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेंबर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माय डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, बट इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे, आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी और मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड। अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है, इज द बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
3: मैं इस फीलिंग को समझता हूँ, जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग एंड यू शुड हैव, यू आर बोर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोले मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और ए आर रहमान, तब ए आर रहमान भी नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song, abhi bhi mujhe goosebumps aate hain is gaane ko sunke. I think this will go down as one of those classics jo main aaj se 10 saal baad bhi play karungi aur hame aisa hi feel hoga. Arman Malik ki awaaz, Arman Malik ki composition, that was main rahun ya na rahun. At RJ Cutting on Instagram par aao and tell me about your story. Kabhi koi aisa compliment mila ho jo aaj bhi bahut special feel karata hai, mujhe aake batao. Back to the countdown, agle wale gaane ki bari. Aditya Rikhari, Rabbit aur Kutle Kha ka gana. It's a Cook Studio Bharat song. Gaane ka naam hai Ae Ajnabi. Pichle hafte se ek position upar jump karke ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: Ana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
6: Mirchi sun rahe hain aap, show ka naam hai Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, jaldi jaldi follow karo, handle is @RJKanika. Follow karna to bilkul free hai, koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I might feature your favorite songs on the show. It's time for what we call
0: Kanika's Cassette Classic.
6: कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं और ये हमारे शो का सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है। इतने सारे DMs, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ। इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के। ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक। बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दो सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस हम कहानियों में सुनते हैं, जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बंदा, वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाह कर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए। आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया। एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम। दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनेका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10, एंजॉय।

0: What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaane Ganam Di Wana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s 2000s ki yehi wale gaane, you know, which makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown. It's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग इज एवरीवेयर एंड वी आर हियर फॉर इट. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. बंदी का नाम है आरजे कनेका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. एंजॉय.
1: नंबर 1.

0: Indie Top 10
1: Kanika Kasat
0: on Mirchi. It's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline?
3: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
2: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
3: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

इस एक फिल्म के पीछे ये फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, जीना तमान एंड आशा पारेख, सब ना बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर एक फिल्म ऐसी आई जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर और आशा पारेख के बीच में ना जय जय हो गई, वो भी पब्लिकली। पब्लिकली बोले तो मतलब सबके सामने नहीं, लेकिन हाँ फिल्म मैगजीन्स ने इनके बारे में जम करके लिखा। कभी कोई फिल्म मैगजीन आशा पारेख का व्यू लिख रही थी और कभी कोई फिल्म मैगजीन एक्चुअली में शर्मिला टैगोर का पीओवी लिख रही थी। वेल, कौन सी थी ये फिल्म अभी आपको बताऊंगी, वापस श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी
1: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार। सारे दिमाग
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं।
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो। कपड़े
0: नहीं
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया। मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah

शर्मिला टैगोर का कहना था कि वो फर्स्ट चॉइस थी फॉर दिस फिल्म, और उसके बाद जब उन्होंने एक फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू दिया और यही बात कोट कर दी, तो भाई घमासान मच गया दो दोस्तों के बीच में, क्योंकि आशा पारेख का कहना था कि वो कभी भी सेकंड चॉइस नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म कटी पतंग, जिसमें थे राजेश खन्ना जी, शक्ति सामंत ने ये फिल्म बनाई थी। एंड कहते हैं कि भाई शर्मिला टैगोर ने कहा कि ये फिल्म सबसे पहले उनके पास गई थी, शी डिनाइड डूइंग द फिल्म क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तो फिर वो ये फिल्म कर नहीं पाई, एंड इसीलिए फिर इसका रोल गया आशा पारेख को। आशा पारेख ने जब ये आर्टिकल पढ़ा एक फिल्म मैगजीन में, उन्होंने उसी मैगजीन को जाकर के फिर से इंटरव्यू दिया और कहा कि ऐसा कभी भी नहीं था, वो पहली चॉइस थी, शक्ति सामंत उनके पास आए थे ये रोल लेकर के। वेल लेटर ऑन शक्ति सामंत ने ये बात एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने सबसे पहले इस रोल के लिए अप्रोच किया था शर्मिला टैगोर को। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कटी पतंग की बातें चलेंगे आज, और इस फिल्म के गाने भी होंगे, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पता है मुझे उस जमाने के गानों की एक बात इतनी खास लगती थी कि गानों में ना सेट्स या फिर विजुअल्स हीरो नहीं होते थे, बल्कि हीरो होते थे लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग, द हीरो एंड द हीरोइन. अदरवाइज विजुअल्स वर सो सिंपल एंड सो सूदिंग टू आईज. तो अगला जो गाना मैं कटी पतंग का आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसमें राजेश खन्ना एकदम नॉर्मल सा कोट पहने हुए हैं, व्हाइट साड़ी में क्लैड हैं आशा पारेख. और आजकल जो विंग लाइनर हम लगाते हैं ना, ये आशा पारेख से ही शुरू हुआ था. मेकअप के नाम पे उन्होंने सिर्फ विंग लाइनर लगाया हुआ है. और उस टाइम पे 90s में चला करती थी ना, पिकनिक मनाते थे हम जाकर के किसी भी ग्राउंड में बैठ जाते थे. सो आशा पारेख एक ग्राउंड में है अपनी सहेलियों के साथ, पिकनिक मन रही है और राजेश खन्ना आने काका उनके इर्द गिर्द घूम करके बस कह रहे हैं ये शाम मस्तानी. ये गाना कमिंग योर वे किशोरदा की आवाज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. फेसबुक और इंस्टा पे यू कैन रीच आउट टू मी, आरजे श्रेया विद लव. दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव इज माय हैंडल.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस टाइम पे ना विलेंस का भी मेजर रोल होता था हिंदी इंडस्ट्री। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड प्रेम चोपड़ा काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो एज अ फेमस विलेन एस्टैब्लिश हो जाएं, जिससे कि उनके पास फिल्मों के रोल आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। बट आफ्टर दिस फिल्म प्रेम चोपड़ा और बिंदु जी के पास ढेर सारे रोल्स आते थे। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म कटी पतंग की, राजेश खन्ना एंड आशा पारेख की फिल्म जो की शक्ति सामंत ने बनाई थी। Well, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म में रोल करने के बाद फाइनली उनका ड्रीम फुलफिल होगा। भाई शोले के बाद तो हर कोई गब्बर बनना चाहता था, तो बस प्रेम चोपड़ा इसी लगन में लगे रहते थे कि एक बार वो किसी तरह विलेन का रोल ऐसे क्रैक करें कि हर कोई उनको विलेन के रोल में एक्सेप्ट कर ले। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम द फिल्म कटी पतंग। इसके बाद बिंदु और प्रेम चोपड़ा के पास इतने सारे रोल्स आते थे कि फिल्में साइन करते करते दोनों थक जाते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अंकल मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
2: अरे मामू सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

आशा पारेख फिल्में तो बहुत सारी कर रही थी, लेकिन कोई भी फिल्म उनका ड्रीम, उनका सपना नहीं पूरा कर पा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आशा पारेख की बात कर रही हूँ, यानी कटी पतंग की बात कर रही हूँ। वेल, आशा पारेख बैग्ड फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म कटी पतंग। आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने ढेर सारे विद मी श्रेया। और सुनो, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आराम से कह सकते हो, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव इज माई हैंडल।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ है सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना
1: है? यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था पहले, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी जी।
1: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन एंड डन, इज़न्ट इट? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर 1 मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म कटी पतंग टुडे। वेल, शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी, काका यानी राजेश खन्ना थे एंड इसमें थी आशा पारेख। अच्छा, आराधना इससे पहले रिलीज हो चुकी थी शक्ति सर की, सो ही डिसाइडेड कि क्योंकि आराधना के गाने इतने सुपर डुपर हिट हुए थे, ही डिसाइडेड कि वो अपनी म्यूजिक टीम सेम रखेंगे, यानी आरटी बर्मन साहब का म्यूजिक रहेगा, आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स रहेंगे और किशोर दा ही सारे गाने जो हैं वो गाएंगे फॉर काका यानी राजेश खन्ना। अब भाई राजेश खन्ना पे जितने भी पिक्चराइज गाने थे वो किशोर दा कटी पतंग के लिए तो गा ही रहे थे, लेकिन एक ऐसा गाना हुआ जिसमें किशोर दा आउट ऑफ इंडिया थे और शक्ति सामंत को ये गाना पिक्चराइज करना था, शूट करना था, तो फिर उन्होंने मुकेश जी को बुलाया और मुकेश जी ने ये खूबसूरत गाना गाया। वेल, इस गाने में एक बोट है, उस बोट पे काका है, उस बोट पे खूबसूरत ब्यूटीफुल लुकिंग आशा पारेख है वो एंड क्लैड इन अ वाइट साड़ी और उनका वो विंग लाइनर भी लगा हुआ है और राजेश खन्ना नाव चला रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नैनीताल की नैनी झील का यू नो सीन है। इसी गाने की तरफ आपको ले जाते हुए मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD स्नूनू, बुक योर्स नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा था और पियानो पे बैठे होते हैं काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख ना उस कश्मकश में है कि अब वो एक विडो हो चुकी हैं, वो इस लड़के की बातों में या इसकी मोहब्बत में नहीं आ सकती, पर दिल कहाँ मानता है ये उनके चेहरे पे साफ दिखता है। सो कहते हैं कि शक्ति सामंत ने जब ये सब्जेक्ट उठाया था तो उन्हें लगा था कि शायद इंडियन ऑडियंस इस बात को एक्सेप्ट ना करे, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था, बट देन ही रियलाइज्ड कि कुछ अलग करना पड़ेगा लोगों को, समाज को, जो कुछ ऐसी रीतियां हैं जो यू नो शुड बी चेंज्ड फॉर बेटरमेंट, वो दिखानी पड़ेगी। और तब उन्होंने बनाई कटी पतंग, इट वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल एज वेल, पुरानी जीन्स पे प्यार दीवाना होता है। कमिंग अप राइट नेक्स्ट फ्रॉम दिस फिल्म कटी पतंग, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
4: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे, तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी।
3: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

बिंदु जी को जब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने ये बताया कि उन्हें एक डांस नंबर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बस वो काफी नर्वस हो गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि ए ग्रेड फिल्मों में उन्हें किसी तरह एक ओपनिंग मिल जाए। वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, तो उन्होंने इस फिल्म में डांस नंबर करने के लिए अग्री कर लिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ कटी पतंग की, एंड द डायरेक्टर जिन्होंने भाई बिंदु जी को ये बात बोली थी वो शक्ति सामंत, द मैन हु डायरेक्टेड दिस ब्यूटिफुल फिल्म कटी पतंग। लेकिन जब बिंदु जी को ये ब्रीफ मिली कि उन्हें एक कैबरे परफॉर्मेंस देनी है, और वो काफी नर्वस हो गई। वेल, जब ये गाना सामने आया तो लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर देते थे। बिंदु जी का ब्यूटिफुल एंड वेरी हॉट परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग मेरा नाम है शबनम। पंचम दाया ने आरडी बर्मन साहब खुद उतरे थे मैदान में गाने के लिए दिस सॉन्ग विद आशा ताई। इस गाने के बाद बिंदु जी को ढेर सारे ऑफर्स आने लगे। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो,

पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रोज रात भर शनि बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking. मामा।

पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ एंड आज कटी पतंग की बातें चल रही हैं और इस फिल्म के गाने. वेल, मुझे लगता है कि उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. आशा पारेख जो कि एक विडो थी, वो प्यार तो करती हैं राजेश खन्ना से, लेकिन वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती. राजेश खन्ना जो उनसे बहुत प्यार करते हैं समाज के चक्कर में, वो अपनी बातें एक्सप्रेस तो करते हैं पर तो उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. वेल, इस फिल्म के बहुत खूबसूरत गाने हैं जिनको आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लिखने वाले हैं आनंद बख्शी और गाए हैं मोस्ट ऑफ देम किशोर दा ने. सो अगला जो गाना है, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का पहला गाना था जिसमें ब्रेकअप पे जुबान से भले ही कड़वे शब्द निकल रहे हों हीरो के यानी राजेश खन्ना के, पर जब आप इस गाने का पिक्चराइजेशन देखोगे तो मुस्कुरा रहे हैं और अपना गम ना मुस्कुराहट से निकालते जा रहे हैं. ये जो मोहब्बत है, कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूं श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कोई यहाँ आहा नाचे नाचे

होली पे ये गाना ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और मुझे लगता है कि आर डी बर्मन साहब ने और आनंद बख्शी साहब ने किशोर दाने मिलकर के ना आपको हमेशा के लिए होली का एक गाना दे दिया इन द फिल्म कटी पतंग। वेल, आज इसी फिल्म की बातें हो रही हैं, इसी फिल्म के गाने हो रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप होली सेलिब्रेट करो और ये गाना ना हो। वेल, इस गाने में ना काका यानी राजेश खन्ना कोशिश तो करते हैं कि वो आशा पारेख को कलर लगाएं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आशा पारेख एक विडो दिखाई गई हैं उस ज़माने की, तो ये करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उनको छेड़ते हुए वो बाकी सबको कलर लगा देते हैं। आज ना छोड़ेंगे, बस समझो ली। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD स्नूनू, बुक योर्स नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आरटी बर्मन साहब और आनंद बख्शी ने मुझे लगता है कि अपने सारे मेलोडीज का जो बटुआ होता है ना वो खाली कर दिया था इन दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ कटी पतंग की बात हो रही है और मैं बातें कम इस फिल्म के गाने ज़्यादा सुना रही हूँ। वेल जनरली ऑल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म वर पिक्चराइज्ड ऑन ऑफकोर्स काका यानी राजेश खन्ना एंड फिल्म की हीरोइन आशा पारे, लेकिन ज़्यादातर गाने जो है ना लाइक 10 में से जो 9 गाने नहीं 8 गाने हैं वो किशोर दा ने गाए हैं या फिर मुकेश जी ने गाए हैं, यानी दे आर पिक्चराइज्ड ऑन काका। लेकिन एक गाना जो कि लता जी ने गाया है जो पूरी फिल्म की थीम पे है कि कैसे आशा पारेख जो एक विडो हैं, बचपन में ही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यू नो वो एक विडो हो जाती हैं, वो चाहती तो हैं कि उनकी जिंदगी फुल पतंग की तरह उड़े, लेकिन क्योंकि समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं कि उनकी जिंदगी कटी पतंग हो गई है। एंड इस गाने में ना राजेश खन्ना एक कमरे में बंद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर हो जाए आशा पारेख से, वो उनसे प्यार ना कर बैठे, पर ऐसा होता कहाँ है। दिल और प्यार उस इंसान को ना उसका कास्ट रिलीजन उसकी सिचुएशन देख करके नहीं आता, ये तो बस आ जाता है सामने वाले पे प्यार। यही गाना कमिंग योर वे, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे आप उस श्रेया के साथ, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, बट ऐसे कहाँ जाती हूँ, हाईवे पे आपको लेके जाऊंगी। वेल, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जो चाहते हैं कि उनकी जाना जो है वो थोड़ी देर और रुक जाए, उनसे दो बातें और करके जाए, लेकिन जाना तो घर वापस जाना चाहती है और वो ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहती है लोगों को कि वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप चाहते हैं कि दो से और चार बातें हो जाएं। तो भाई आपके लिए गाना, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी ऐसे वन टू वन तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल। ऑन दैट नोट, गुड नाइट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना, मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

अरे टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं, गोविंदा के संग। अरे समझे,

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.